मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

मनमोहन सिंह और लता जी की आवाज़ में वारिस मूवी का ये गाना था, वर्मा मलिक के बोल और उत्तम जगदीश का संगीत था। वैसे एक आप एक बात बताइए, आपको सिर्फ अपने काम में बिजी रहना है या अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों से भरे दिनों की कुछ तैयारी भी करनी है? अरे भाई, मतलब इस महीने से आपको पता है, ऑफकोर्स पता है कि सावन शुरू होने वाला है और अगले महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन है, यानी अब धीरे धीरे उत्सव के दिन आने वाले हैं, तो उन दिनों के लिए आपको अलग से ना टाइम निकाल कर रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि ऐसे टाइम में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है तो बारिश होगी, यानी चाय पकौड़ी और छतरी का मौसम होगा। और अभी तो दिल्ली में इस टाइम में आप देखेंगे बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मतलब अगर आप बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा। मैं तो खुद ही अभी स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी चाय पकौड़े छतरी का मौसम। तो इस मौसम में खूब घूमने फिरने का मजा लीजिए और दिल्ली में तो घूमने को इतना कुछ है कि आप बोर हो ही नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी में एक सीट खाली हो ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा पक्का।

मिठाई की दुकान पर घेवर आ गया है, तो सोचा मेरी तरह घेवर के जो लोग शौकीन हैं उन्हें बता दो कि भाई मुंह मीठा करने का टाइम आ गया है। और वैसे हाँ, टाइम से याद आया कि भोर सुहानी शो का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है और अगले घंटे मुक्ता होंगी आपके साथ अर्पण शो में, और मैं पंकज आपसे जल्दी मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो अभी के लिए मुझे भोर सुहानी शो से दीजिए अनुमति। नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही थोड़ी देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी मुक्ता। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान बाल कांड भाग 128। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात।

इसमें मुक्ता आपके साथ रहेंगी। म्यूजिकल दिल्लगी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आप मनभावन गीतों का आनंद लेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी मुक्ता। सुबह 9:10 पर नाज शेख आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक दिल लगी। रिक्वेस्ट बेस्ड कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे आज सुबह 10:30 नाज शेख के साथ। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें आज आप जान पाएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित डलहौजी के बारे में। नाज शेख इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 12:10 पर। इसमें आपके साथ होंगे श्रुति पुरी और रजनी मेहंदी रत्ता। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज आप सुनेंगे कलाकार आनंद बख्श, गीतकार आनंद बख्शी के बारे में। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी रजनी मेहंदी रत्ता। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। बजकर 10 पर आप सुनेंगे रिक्वेस्ट बेस्ड शो मन भावन, इस कार्यक्रम में आपके लिए होंगी अपराजिता स्नातक। शाम 4:10 पर फिल्मी गीतों पर आधारित आप कार्यक्रम सुनेंगे। अपराजिता स्नातक इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे। शाम 5:10 पर गाते गुनगुनाते ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। इसमें आप 80s और 90s के एरा के गीतों का आनंद लेंगे। अपराजिता स्नातक इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे रिकॉर्डेड कार्यक्रम विश्लेषण। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले, इस कार्यक्रम में आप पुराने गीतों का आनंद ले सकेंगे। इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे सुनील दत्त। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक और 9:45 का समय रहेगा कार्यक्रम मंथन का। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हर सिंगार और रात्रि 11:10 पर मार्केट मंत्र, कुसुम लता इसमें आपके साथ होंगी और कुसुम लता आपके लिए एक बार फिर से लेकर आएंगी 11:40 पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत। तो ये थे आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति

0: जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा की विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रेम प्रीति को करे करे जगत व्यवहार, जाकी भक्ति हनुमान सी सो उतरे भव पार। जी हाँ, ऐसे भक्ति मार्ग पर चलकर हम भी अर्पण कर पाए। ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। 6:11 और 55 सेकंड हुए हैं। सुप्रभात।

ब्रह्मा विष्णु महेश विख्याता, जिन ये सकल पसारा ताता। शिव संकादिक अंत न पाया, सोई आदि पुरुष घट भीतर आया। भगवान शिव तो प्रत्येक जीव के भीतर मौजूद अनंत शक्ति का स्रोत हैं। आत्मा की इस असीम शक्ति को सदैव नमन करना चाहिए।

चेतना एक मानव की सहज अवस्था है, लेकिन हम इसे केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान हमारे शरीर से, हमारे विचारों से और हमारी भावनाओं से बना लेते हैं। जो चेतन है वो स्वयं को जानता है, उसे उसकी पहचान पता है। जो आत्मज्ञानी है वो परमात्मा के अलावा किसी और पर कभी भी निर्भर नहीं करता। हालात, परिवार, समाज कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर पाता। कोई घटना उस इंसान को नीचे नहीं जाने देती क्योंकि उसका विश्वास सुदृढ़ होता है। वो चेतन होता है, वो आत्मज्ञानी होता है।

0: चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जी हाँ, जिसकी चाहत चली जाती है, जिसके पास इच्छा नहीं रहती, उसकी चिंता अपने आप मिटती चली जाती है। और जब चिंता मिट जाती है तो ये मन भी बेपरवाह हो जाता है, परिस्थितियां इस मन पर हावी नहीं होती हैं। अर्पण का ये भाव जीवन में बना रहे, इसी कामना के साथ अर्पण को अभी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से विराम के साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

भक्ति जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, भक्तिमय जीवन होना चाहिए। मानव शरीर के साथ ही परमात्मा का आना हो जाता है हमारे साथ, और ऐसे में इसको पाने की लालसा तब बनती है जब हम इसे खो देते हैं, और खोते हम तभी हैं जब हम चेतन नहीं होते, जब हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। भक्त को तो अपना परमात्मा अपने भीतर दिखाई देता है। संत मीराबाई की भक्ति भी ऐसी ही थी, अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और मधुर भाव वाली। ईश्वर से मिलने की आत्मा की व्याकुलता को ही वो आत्मशुद्धि का मार्ग मानती थी। सत्य है, एक भक्त जब अपने परमपिता से गूढ़ प्रेम करता है तो उसे अपने हृदय के भीतर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है।

संतों का फरमान यही है, कर्म से मुंह को मोड़ो ना, मानव का हर धर्म निभाओ, फर्ज से नाता तोड़ो ना। छह बजकर 43 मिनट और ठीक 57 सेकंड हो चले हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हैं। अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। अर्पण के कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आइए अब आप और हम मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए।

और कुटुंबियों को भोजन कराया। पांच घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं संप्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मैसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि सम्बोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगम इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपति ही सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैक शततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः संयुक्तारक्षकायुक्तः अपरायुक्तः उपारक्षकायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शन समये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटना समये पञ्च भारतीय नागरिकः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामा देशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामा देशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्त्वं अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः UPI इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत

0: हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. On the second leg of a three-nation state visit, President Draupadi Murmu has reached North Macedonia. This is the first ever visit by an Indian president to North Macedonia. President Murmu will hold bilateral talks with a Macedonian counterpart, Gordana Siljanovsku Davkova. She will also meet the Prime Minister Hristijan Milskosti, Speaker of the Assembly, Afrim Gashi, and will also address the Assembly of North Macedonia. The President will also address India-North Macedonia Business Forum. Both sides have keen interests in deepening economic ties in the priority sectors like agriculture, pharmaceuticals, science and technology, IT and ITES. President Murmu is also scheduled to visit the Church of St. Spa and will also lay a wreath at the grave of eminent Macedonian revolutionary Gotse Delchev. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Acha Vasque in New Delhi.

रात के अंधेरे को सूर्य की रोशनी खत्म कर देती है, ठीक ऐसे ही जीवन में आए अंधकार को पॉजिटिविटी और विश्वास से खत्म किया जा सकता है। जी हाँ जनाब, विश्वास का यही संदेश लाई है आज की सुबह। मंगल की मुक्ता के साथ आप सभी को गोल्ड सुप्रभात।

जी हाँ, ये खूबसूरत सुबह और इसकी भूमिका रात से ही बन रही थी। बहुत सारे इलाकों में दिल्ली के रात से बारिश हो रही है। हम अपने घर से चले सुबह तो भी सड़कें गीली थी, यहाँ स्टूडियो तक आई तो भी सड़कें गीली थी। तो लगा कि भाई ये दिन साल में बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनका पूरी तरह से आनंद उठाते हैं। तापमान भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि ठंडक जो है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी। आज का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कल भी हल्के फुल्के बादल दिख रहे हैं और पूरा हफ्ता जो है

एक या दो डिग्री का अपडाउन ही होगा, यानी मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्योदय की बात करें तो आज 5:36 पर हुआ था सूर्योदय, और सूर्यास्त का समय है 7:18 का। बारिश की वजह से दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता का स्तर है वो भी बेहतर हो रहा है, 100 के आसपास है इस वक्त। और अगर आपके इलाके में बारिश नहीं है, धूप नहीं होगी मुझे लगता है ऐसा, तो ऐसे में इस खूबसूरत मौसम में अच्छे एयर क्वालिटी इंडेक्स में करना क्या है आपको? जी हाँ, घर के पास के पार्क में पहुंच जाइए, हल्की फुल्की वॉक ही सही, लेकिन इस हवा का आनंद जरूर लीजिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सात बजकर 21 मिनट और ठीक 35 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है

अच्छा वैसे कह तो हम भी आपको देते हैं, आपको पता है ना फ्लेक्सिबिलिटी हमारे स्वभाव में कितनी जरूरी है, और स्वभाव से बहुत ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए है। जी हाँ, ये लचीलापन अगर आपकी बॉडी में है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और फ्लेक्सिबल बॉडी कैसे होगी? योग के साथ। जी हाँ, योग एकमात्र रास्ता है बहुत सारी बीमारियों के फायदेमंद परिवर्तन के लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औसतन इंसान के लिए, ताकि वो बीमार पड़े ही ना। बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी तो फिर किसी तरह की परेशानी आने के लिए 10 बार सोचेगी। और आपको पता है, अगर आप सारा दिन काम करते हैं और आपका काम बैठने का है, तो आपके बॉडी पॉस्चर को ठीक करने में, उसे सुधारने में भी योग की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें गुस्सा ना आए, हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएं, हमारे निर्णय लेने की शक्ति और मजबूत हो जाए, इसमें भी योग बहुत मदद करता है। क्योंकि योग जो है वो सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर की जागरूकता को बढ़ाता है, हमारे दिमाग को खोलता है, और सुबह का वक्त बेस्ट होता है इन चीज़ों के लिए।

जी हाँ, खूबसूरत दिखते रहिए और अपने मन को भी खूबसूरत रखिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मुस्कान का भी कारण बनते रहिए। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। और अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात। समय आप जानते हैं ना आप क्या है, समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: व्यक्ति को अपनी असफलता से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो किसी और के सुझावों से प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आज सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, वी वेलकम यू, एंड एज मुकेश सेड, इवन आई वांट टू ऐड समथिंग देयर। वेल मुकेश, टू बी ट्रूली सक्सेसफुल वी शुड वर्क विद टू थिंग्स, वन डिवोशन, सेकेंड डेडिकेशन, राइट? टू डीज, एंड वॉट एवर मे बी योर गोल्स, you will definitely achieve them.
0: बिल्कुल.
1: And this is our hope.

0: और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले शगुन आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
1: सो मुकेश, द अपडेट दैट आई हैव, इट इज अबाउट गेट 2027। This will be conducted as a computer-based test and will feature the Indian Institute of Technology Madras will actually conduct the Graduate Aptitude Test in Engineering or GATE from 6th to 21st February next year in the year 2027. So the GATE is India's premier national level examinations for higher education and recruitment in engineering and related disciplines. So the online application portal, this we have to take care of, the listeners. It is expected to open in the middle of August 2026. So keep an eye on it.
0: बिल्कुल। और मुंबई की खबरों पर नजर डालें तो मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती उपाय के रूप में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन प्रतिबंधों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व अनुमति के बिना 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध

0: खुफिया जानकारी के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इसमें इस अवधि के दौरान अशांति की संभावना जताई गई है। सोमवार को पड़ोसी जिले ठाणे के कल्याण और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों पर बम से उड़ाने की धमकी के बाद दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद जीआरपी, रेलवे पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। पुलिस अब सूचना के स्रोत और प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए फोन करने वाले का पता लगाने और उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar launched two citizen-centric initiatives, free doorstep delivery of caste certificates across the state, second one delegation of powers to Deputy Tehsildars to issue permanent residence certificates. Speaking after launching the initiatives in Bengaluru yesterday, the Chief Minister said the measures would simplify access to government services and reduce the need for people to visit government offices. He said 4.85 crore digital caste certificates have already been prepared for doorstep distribution through district administration, while citizens can also download them free of cost online or obtain printed copies at government assistance centers.
0: और अब चलते हैं कोलकाता। कोलकाता में राज्य में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पंचायत विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नया निर्देश 1 अगस्त से लागू होगा और बढ़ी हुई राशि पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
1: Now we will focus our attention on Hyderabad. Telangana Governor Shri Shiv Pratap Shukla addressed students during the 86th Foundation Day celebrations of the Keshav Memorial Educational Society in Narayanaguda. He urged the youth to prioritize national progress and also emphasized that value-based education, discipline and a spirit of service from the bedrock of a developed India.
0: और रुख करते हैं दिल्ली का। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए कल एक यातायात पाठशाला आयोजित की। ये कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान चौराहों और लाइट पॉइंट्स पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को यातायात सुरक्षा की जानकारी वाले इश्तहार बांटे गए और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है और दिल्ली सरकार इस महीने की 25 तारीख को सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीए मीटिंग आयोजित करेगी। इस बैठक में अभिभावक और शिक्षक मिलकर पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच, ऑनलाइन सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
1: Well, we would like to share one more update from Kolkata with our listeners. So the Election Commission is organizing an international conference in Kolkata today to discuss the process of making the postal ballot system more inclusive, secure and accessible. More from our correspondent.
2: The conference is being jointly organized by the India International Institute of Democracy and Election Management and International IDEA. Election officials from all 24 electoral districts of West Bengal will attend the event along with election administrators, policymakers, academics and election experts from India and several other countries. The discussions will focus on ways to make postal ballot and special voting arrangements more inclusive, accessible and secure. West Bengal Chief Electoral Officer Neelam Meena will inaugurate the conference. The program will feature thematic sessions on postal ballots, maintaining electoral integrity, preventing fraud, audit mechanisms, the legal framework, technology-enabled special voting systems, and the future of remote voting. During the international session, election experts from Nepal, Albania, Bosnia and Herzegovina, and other countries will share their experience virtually. Alongside India's experience, international best practices will also be discussed. Shondi Bandash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
0: आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा के साथ। तो आज सवेरे हम वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सब शगुन सबसे पहले दिल्ली का मौसम अपने श्रोताओं को बताएं।
1: ऑफ कोर्स,
0: तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं कि वर्षा जो है रात भर हुई है।

0: अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: सो मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव रेन और थंडर शावर्स एंड दे वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और एट नाइट। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विथ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म इवन एंड द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस इन हैदराबाद।
0: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 21 जुलाई है और आज ही के दिन 1969 में अमरीकी अंतरिक्षयात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे।
1: इन 1960 पॉलिटिशियन श्रीमावो बंदरनायके बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर व्हेन शी टुक ऑफिस इन श्रीलंका।
0: 2004 की बात करें तो आज एक दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने भारी बहुमत से पश्चिमी किनारे के फिलिस्तीन क्षेत्रों में इसराइल को बाढ़ हटाने का प्रस्ताव पारित किया था।
1: इन 2007 वेल द सेवेंथ एंड फाइनल हैरी पॉटर नॉवल हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज इट वाज रिलीज्ड विद एन इनिशियल प्रिंट रन ऑफ 12 मिलियन कॉपीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन।
0: और 2007 में आज ही के दिन वॉशिंगटन में 4 दिन तक चले विचार विमर्श के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था।
1: इन 2008 रामबरन यादव वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। आल्सो एडिंग देयर ऑन अ काइंड ऑफ अ फनी नोट, टुडे इट्स आल्सो नेशनल जंक फूड डे एंड सो जुलाई 21 डेडिकेट्स अ जायंट मेन्यू ऑफ आइटम्स टू नेशनल जंक फूड डे एंड दिस डे परमिट्स अस टू ईट or to chow down on the foods we usually don't include in our daily diet.
0: बिल्कुल, जो और जो जंक फूड के जो नुकसान हैं,
1: we all know
0: that, जो हानि है उसके बारे में भी कुछ बताएं।
1: Right, so junk foods they by definition they typically contain high fats, sugar, salt and calories and very little nutritional value. And with the advent of packaged foods during the late 1800s, junk food made its way into the American life and then permeating gradually and spreading across the whole globe. So, however, home-cooked meals, they remain the standard for several more decades. So, but I think everyone can indulge in their favorite treats just for a day, kind of a cheat meal, right? So, this day, it is a guilt-free pass to enjoy delicious snacks, fast food and desserts without reservation. So, embrace the joy of your preferred comfort food. You can also cook at home. It's all right. Share your indulgences with your family and friends and savor every bite. That's what we wanted to tell you, listeners.
0: और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल सखाराम पागे को। वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। विट्ठल सखाराम पागे का जन्म जुलाई 1910 में जिला सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री मुंबई से ली थी। वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 11 जुलाई 1960 से 24 अप्रैल 1978 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग के वी महादेवन, कंपोजर एंड सिंगर सॉन्ग राइटर एंड अ म्यूजिशियन, won the inaugural National Film Award for Best Music Direction for Kandar Karunai. And we know him for his works in Tamil, in Telugu, Malayalam and Kannada films as well. He is best known for his contributions in works such as Lavakusa and Balaraju as well. I was telling our listeners about K.V. Mahadevan.
0: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय रामदास दौलतराम को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और स्वतंत्रता के बाद जय रामदास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए थे। वो असम के राज्यपाल भी रहे। 1979 में उनका निधन हुआ। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1985 में डाक टिकट जारी किया था।
1: सो लिसनर्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग अ म्यूजिशियन, well, the singer of khayal genre of Hindustani classical music from Karnataka. We know her for her deep and powerful voice, Gangubai Hangal. So she belonged to the Kirana Gharana, Mukesh. Bilkul. And I was telling you about her deep and powerful voice, which we can listen to in this particular song.

और गंगूबाई हंगल ने जाति बाधाओं को पार कर संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी नाम दिए हैं। इनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंचाक्षरी गवई, पंडित पुत्तूराज गवई, पंडित सवई गंधर्व तथा पंडित कुमार गंधर्व शामिल हैं।

0: Well, this is such a beautiful composition, Gangubai Hangal.
1: और भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की आज पुण्यतिथि है। अरब शैली के संगीत की टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए, ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनियों के स्वरों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। तो उनका सजाया हुआ एक गाना सुनते हैं।
0: Sure.

वे इस मामले में लीक से हटे हुए संगीतकार रहे, जिन्होंने अपने समकालीनों की तरह दूरी बरतते हुए कुछ तिरछा रास्ता पकड़ा। हिंदी में जिस तरह शमशेर बहादुर सिंह और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमीर खान साहब का मार्ग रहा, सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ बम्बई आ गए। उनका पहला काम सोहराब मोदी की मिनरवा मूवी टोन में 30 महीने पर था। बाद में वो वाडिया मूवी टोन में चले गए, जो कि 60 रुपए महीने पर था। तो क्यों ना उनका एक और गाना सुना जाए।

0: Today, we're also telling you about Uma Shankar Joshi, prominent Gujarati poet, scholar, and literary critic who significantly influenced 20th century. His works, notable works, they include Gangotri and Nishith, and they showcase his deep engagement with human emotions.
1: और अब हम याद कर रहे हैं विल्लुपुरम चेन्नैया पिल्लई गणेशन को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें मुख्य रूप से शिवाजी गणेशन के नाम से जाना जाता है. तमिल सिनेमा की प्रमुख हस्तियों में से एक शिवाजी गणेशन संवाद अदायगी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुपरस्टार थे. शिवाजी गणेशन ने रंगमंच के साथ साथ फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया.
0: राइट मुकेश, सो शिवाजी गणेशन इज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम एंड अमंग द मोस्ट इमिटेटेड one, the most imitated one by other actors. We'll now listen in to one of his very famous classics now.

0: பண்ணுதடி என் மனம் கட்டி ஏக்கமும் பட்டு என்னம பண்ணுதடி குங்கும குங்கும குங்கும குங்கும குங்கும பூவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புறாவே।
1: और श्रोताओं, सिनेमा जगत के प्रख्यात गीतकार आनंद बख्शी की आज जयंती है। वो एक लोकप्रिय भारतीय कवि भी थे। वर्ष 1967 में प्रदर्शित सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन के गाने सावन का महीना पवन करे शोर, युग युग तक गीत मिलन के गाते रहेंगे, राम करे ऐसा हो जाए, कितने अच्छे गाने उन्होंने उन्होंने लिखे थे और इन गानों से उन्हें नई ऊंचाइयां मिली। चार दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से अधिक फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे। तो क्यों ना मिलन फिल्म का ये गाना सुन लिया जाए।

0: Well, such a beautiful song. So, Anand Bakshi, we are remembering the man who set a legacy. He was nominated for the Filmfare Award for Best Lyricist a total of 37 times.
1: जी.
0: The most number of nominations, and this resulted in 4 wins.
1: और अपने श्रोताओं को बता दें कि आनंद बख्शी के परिजनों ने उनका नाम आनंद प्रकाश रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद आनंद बख्शी के नाम से उन्हें पहचान मिली. और मोम की गुड़िया सन 1972 की फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया और गीत लिखे थे, और मोहन कुमार की फिल्म थी जिसमें मुख्य कलाकार थे रतन चोपड़ा और तनुजा. ये कम बजट की फिल्म थी जिसमें संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार आनंद बख्शी को गीत गाने का मौका मिला था.

0: तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए।
1: नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। वाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिया में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंटी इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिया में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वज़ीर आज़म क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया की पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी।

सदर जम्हूरिया तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात दो रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंचीं। ये किसी भारतीय सदर जम्हूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फ़रोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इक्तसादी ताउन को मजीद उसत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में पांच भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने यह बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाजों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाजों की आजादाना नकलो हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिल मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और मुतासिर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाज़ा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़रात, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अलाक्वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वजीर खारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा जिससे दो ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क्लीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवायद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है।
इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अल-अक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के जरिए वोट डालने के

0: अमल को मजीद जामे महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त मुतालिक बैन अलाक्वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक्वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरब बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी जिलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निजाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधड़ी की रोकथाम, ऑडिट के निजाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निजाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निजाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम अज कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल है। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के 5 ज़िलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर

0: हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिये अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

दिल की बात दिल तक पहुंचने वाले गीतों के साथ। जी हाँ, ये है म्यूजिकल दिल्लगी मुक्ता के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्त, हार से डरना नहीं, क्योंकि असफलता तो केवल सीढ़ी है और यही सीढ़ी पहुंचाएगी आपको सफलता के शिखर तक, मंजिल तक पहुंचने के सफर को कुछ हद तक हम करेंगे कोशिश सुहाना करने की। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

कह देती हूं हर बात मुंह पर, मुझे बातें बनानी नहीं आती। मुख्तलिफ सी हूं जरा, हर बात रास नहीं आती। जो मेरा है नहीं छोड़ सकती हूं बस उसे, बाकी पराया जो भी हो उस पर नजर नहीं जाती। नादान हूं, ठोकरे खाती हूं बहुत, मगर गिरकर सीख लेने में मुझे तनिक भी लाज नहीं आती। नहीं मैं मुकम्मल हस्ती कोई, खामियों का एक पुलिंदा हूं। गिनाते होंगे और लोग खूबियां अपनी, मैं अपनी खामियां गिनाने में नहीं शर्माती।

दिल की बातें सुनते रहिए, अपने आप कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूजिकल दिल लगे फिलहाल यहीं तक। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए और उसके बाद नास के साथ इस सफर को आगे बढ़ाइए। मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय पार्टी की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में होगी। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक आमतौर पर संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूरी एकजुटता को दिखाना है। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री मोदी को सम्मानित करते हुए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत कल हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: Technology and of course most important trade.
0: Videsh

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिकम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के 1 दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with the North Macedonian counterpart Gordana Siljanuska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Ristian Mikoski and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. President Murmu arrived in North Macedonia last night on a 2-day state visit as part of a 3-nation tour of Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance of India, which India attaches to strengthening bilateral ties with the 3 countries and its engagement with the wider Eastern European region. India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odisha in Ukraine. The External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including 5 Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the ranks of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behaviour and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. The West Bengal government has approved the enhancement of monthly financial assistance under social welfare pension schemes for old age, widow and disability pensions from 1,000 rupees to 1,500 rupees from 1st of next month. In an official order released yesterday, the government said

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ होंगी ढेर सारी बातें, एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग और कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। तो बने रहिए साथ और एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त ट्रैक।

कहते हैं लोग मोहब्बत में हदें पार कर देते हैं। क्या आपने भी कभी किसी के लिए ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ तो ये अगली कुछ लाइनें आपके लिए हैं। कि जिस्म से होके पार आए हम, कि जिस्म से होके पार आए हम, रूह अपनी उसकी नजर पर हार आए हम। उनसे मिलने की बेकरारी थी और मिलके भी बेकरार ही आए हम। आखिरी बार मिलके आए तो उसके दिल से ही उतर आए हम। उसे एक भरोसा दिलाने के खातिर हर शर्म सारी हया निसार आए हम। और अब के फिर लौटकर कहां जाएं हम? उसके लिए अपने ही घर से होके फरार आए हम।

अरे उसकी ना किस्मत बहुत अच्छी है। कितनी बार ये बात आपने कही है या फिर किसी को कहते सुना है किसी के बारे में? तो अब जरा ये सुनिए। होते हैं कुछ लोग जो कर दिखाते हैं जो वो करना चाहते हैं। होते हैं कुछ लोग जो अपने सपनों को वक्त रहते पहचान लेते हैं। होते हैं कुछ लोग जिनके सपनों में उनकी खुद की नजरों में आने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। होते हैं कुछ लोग जिन्हें दुनिया से लड़ने से पहले खुद से नहीं लड़ना पड़ता। होते हैं कुछ लोग जो हर किसी को अपने सपनों का हिसाब नहीं देते और जो सपनों को मुकम्मल शक्ल देते हैं ना, वो कभी कुछ कहकर जवाब नहीं देते। होते हैं कुछ लोग जो किसी से बिना डरे करते रहते हैं अपने हिस्से की मेहनत और इस कायनात की नजरों में आते रहते हैं, और फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे लोगों को खुशकिस्मत बता देते हैं। पर वाकई होते हैं कुछ लोग जो कर दिखाते हैं जो वो करना चाहते हैं।

सो लेट्स फॉरगेट सारी परेशानियां और सारी टेंशन एंड फोकस ओनली ऑन दैट थिंग्स जो आपको मोटिवेट रखती हैं। पहले तो अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए और उसके बाद जो ठान लिया है उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बशर्ते जो तय किया है आपने उससे आपका फायदा हो या ना हो, किसी दूसरे का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब आज के इस ज्ञान के बाद आज का मौसम क्या कह रहा है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से है सक्रिय और गरज और चमक के साथ बारिश का माहौल बना हुआ है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो 28 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। सुबह से ही बारिश हो रही है, धीमी धीमी हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है जिसे आपको एंजॉय करना है, लेकिन कुछ सावधानियों

आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर खास तौर पर ध्यान रखिए ताकि डेंगू के मच्छर आपके आसपास पनप ना पाए। मच्छरदानी का हो सके तो इस्तेमाल करें सोते समय, और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। पानी की सफाई का ध्यान रखें, साफ उबला हुआ या फिर फिल्टर पानी ही इस्तेमाल में लाएं। बाहर के खाने से परहेज करें, फ्रेश घर का ताजा खाना ही खाएं। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है, और साथ में एंजॉय करना है ये अगला गाना भी और ये खूबसूरत मौसम भी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूं।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

म्यूजिकल दिल्ली की चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज, जहां बातों के सिलसिले को अब बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि किन वजहों से खास है आज की ये तारीख यानी 21 जुलाई। भारत समेत पूरी दुनिया के लिए आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि साल था वो 1883 जब कोलकाता में देश के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल की शुरुआत हुई थी और जिसका नाम था स्टार थिएटर। फिर साल 1988 में आज ही के दिन भारत के संचार उपग्रह इनसेट 1C को फ्रेंच गुयाना के कोउरू से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इससे पहले साल 1963 में आज ही के दिन काशी विद्यापीठ को मिला था विश्वविद्यालय का दर्जा और आज ही के दिन साल 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन में धरती का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था जो कि था -89.2°C। इंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मैं मिलती हूँ आपसे इसके बाद।

साल 2007 में आज ही का दिन था जब द फेमस नॉवल हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पब्लिश किया गया था और जिसने तब बिक्री के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। मशहूर ब्रिटिश राइटर जे.के. रोलिंग की वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज की ये सातवीं और आखिरी बुक थी जिसे 21 जुलाई यानी आज ही के दिन साल 2007 में लगभग 93 देशों में एक साथ रिलीज किया गया था। पूरी सीरीज का क्लाइमेक्स इस बुक में था तो जाहिर है कि क्रेज इस बुक को लेकर पहले से ही बहुत था। आंकड़े बताते हैं कि रिलीज के पहले 24 घंटों के अंदर ही इस बुक की 11 मिलियन यानी लगभग 1,10,00,000 कॉपीज बिक गई थी। साल 2011 में इसी बुक पर बेस्ड हैरी पॉटर मूवी की आखिरी माफ कीजिए इस मूवी सीरीज का आखिरी पार्ट रिलीज हुआ था और इस पार्ट ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में ये शामिल हो गई जिसमें जादुई दुनिया की सैर कराते हुए हैरी, रॉन और हरमाइनी की बेमिसाल दोस्ती हमने देखी। तो चलिए हम भी सेलिब्रेट करते हैं हमारी दोस्ती और सुनते हैं वो ट्रैक जिसे फ्रेंडशिप एंथम अगर मैं कहूँ तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा।

बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। जिंदगी के सफर में किस तरह गुजर जाता है वक्त जो कभी लौट कर नहीं आता, ये शायद उस कलम से बेहतर और कोई समझा ही नहीं सकता था जो आनंद बख्शी साहब के हाथों में थी, है ना। शब्दों के जादूगर थे वो, जिन्होंने भले ही कभी कोई गजल नहीं लिखी, ऑफिशियली कभी कोई शायरी या फिर कोई किताब भी नहीं लिखी, लेकिन उनका लिखा हर गीत और उसका हर अंतरा गालिब और मीर के शेरों जैसा ही वजन रखता है। आज यानी 21 जुलाई को ही साल 1930 में बख्शी साहब का जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा के सबसे महान, सफल और मशहूर गीतकार के रूप में बख्शी साहब ने अपनी पहचान बनाई, जिसके लिए उन्होंने 4 दशकों से भी लंबे अपने करियर में लगभग 550 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए हजारों गाने लिखे, और कुछ ऐसे लिखे जो कभी मिट नहीं सके और ना ही कभी मिट पाएंगे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और गाना जो सिखाता है कि बस चलना और चलते रहना ही तो जिंदगी है।

मशहूर भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का भी आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन साल 1947 में उनका जन्म हुआ था। इनके साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और मशहूर गुजराती साहित्यकार उमा शंकर जोशी का भी आज जन्म दिवस है। और भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ रहे विट्ठल सखाराम पांगे और जय रामदास दौलतराम का भी जन्म आज ही के दिन यानी 21 जुलाई को हुआ था। और इन सब खासियतों के साथ ही आज से शुरुआत हो रही है खर्ची पूजा के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यानी स्नान यात्रा की।

पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक पर्व है खर्ची पूजा, जिसका उत्सव 7 दिनों तक चलता है और जो मुख्य रूप से पृथ्वी यानी धरती माता के शुद्धिकरण और मानव जाति के पापों को धोने के लिए मनाया जाता है।

और अब म्यूजिकल दिल्लगी के आज के सफर को थामने से पहले बात भारत सरकार की उस क्रांतिकारी योजना की भी, जिसका मकसद है देश के बुनियादी ढांचे का विकास करना, साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। 13 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई ये योजना कोई एकल योजना नहीं है, बल्कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम लगातार कर रही है। सड़कों, ट्रेनों और उड़ानों के बेहतर नेटवर्क से लेकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने तक पीएम गति शक्ति योजना काम कर रही है। मैं यानी नाज अब ले रही हूं आपसे कुछ देर की इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अब ठीक 10:30 बजे। दिल का मेलबॉक्स रहेगा प्रोग्राम, और अभी एक और खूबसूरत ट्रैक के साथ छोड़कर जा रही हूं आपको, जिसके उस पार जरूर सुनिएगा देश और दुनिया का हाल हिंदी समाचारों और इंग्लिश न्यूज के जरिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है।

0: मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आपसी संबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की स्वीकृति दे दी है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भारतीय चुनौती रखेंगे। ओलंपियन तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋतुगा शिवानी गड्डे मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, is currently underway at the Parliament House in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Prime Minister Modi has congratulated Andy Burnham on assuming office as Prime Minister of the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that India and the UK are bound by shared democratic values and enjoy wide-ranging cooperation across trade, investment, technology, defence and people-to-people relations. He noted that as India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement enters into force this month, the bilateral partnership between the two nations is poised to grow even stronger. The Prime Minister added that he is looking forward to working closely with Mr. Burnham to deepen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership further and advance the shared vision 2035. President Draupadi Murmu will hold talks with the North Macedonian counterpart Gordana Silinoska Davkovka in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Mikoski and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the Indian North Macedonia Business Forum. The Central Drugs Standard Control Organization has granted marketing authorization for India's first dengue vaccine, the attenuated dengue vaccine, Qdenga, to strengthen national dengue prevention efforts. This is the first dengue vaccine approved in the country for the prevention of dengue disease. The vaccine is approved for the prevention of dengue in individuals 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries. Ministry of Health and Family Welfare said that the approval of the country's first dengue vaccine marks an important milestone in India's public health response. National Security Advisor Ajit Doval has been selected for this year's prestigious Lokmanya Tilak National Award. The award will be presented on August 1st in Pune on the occasion of 106th death anniversary of Lokmanya Tilak. Union Home Minister Amit Shah, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Sunetra Pawar will attend the award ceremony. The award comprises a memento, a citation and a cash prize of 1 lakh rupees. Ajit Doval has been chosen for his outstanding contribution to strengthening India's national security, counter-terrorism operations, covert missions and border security. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the ranks of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behaviour, and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said the protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles, and resorted to violence, posing a serious threat to public order. It said the medico-legal examination of the remaining injured police personnel is underway. The police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said around 70 protesters have been detained and appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of the BNS and other applicable laws. Domestic equity markets opened on a flat note this morning as investors remained cautious amid ongoing geopolitical tensions in the Middle East, despite a decline in crude oil prices. Sensex opened 58.89 points lower at 77,649, while Nifty fell 22.45 points to 24,216. Sectorally, IT, cement and metal stocks bucked the weak broader trend. Auto and FMCG stocks also traded marginally higher. In hockey, the Indian sub-junior men's and women's teams made a winning start to their respective campaigns at FIH Youth Hockey's Asian Championship 2026 in Muscat, Oman yesterday. And that is the end of this news bulletin.
0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोदाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए और 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कई सामानों पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाया। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियालोनोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और साझा दृष्टिकोण 2035 को आगे बढ़ाने के लिए

0: बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, चालक दल की जान जोखिम में डालना और आवाजाही तथा व्यापारिक स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना जैसी घटनाएं निंदनीय हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति दी है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए स्वीकृत है। इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व जानकारी की जांच के बगैर लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कई सामानों पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम अमेरिकी उत्पादों के प्रति कनाडा के भेदभावपूर्ण व्यवहार के जवाब में उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बयान में बताया गया है कि इस कदम से कार, शराब और डेयरी उत्पादों सहित महत्वपूर्ण अमेरिकी निर्यातों के लिए समान अवसर मिलेंगे। अमेरिका ने कहा कि पिछले 1.5 साल में केवल चीन और कनाडा ने ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के साथ समझौते करने के बजाय जवाबी कार्रवाई का विकल्प चुना है। इस बीच कनाडा ने कहा कि ये अमेरिकी टैरिफ तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते कनाडा अमेरिका मैक्सिको समझौते का सीधा उल्लंघन है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कहा कि कनाडा अपने देश में मजबूती लाने और अपने श्रमिकों, किसानों, व्यवसायों और परिवारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरान के प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने 3 बलूच नागरिकों के कथित अपहरण की निंदा करते हुए कहा कि ये घटनाएं गंभीर मानवाधिकार संकट को दर्शाती हैं। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घटना पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में स्थित नूरिस्तान प्रांत में कल तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में करीब 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 80 लोग घायल हुए हैं। 100 से अधिक लोग लापता हैं। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बाढ़ से प्रांत में अत्यधिक जानमाल का नुकसान हुआ है। राहत और बचाव अभियान जारी है। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेगा और भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा करेगा। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुड्डा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे।

स्वागत है आपका एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर है आप, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, दिल का मेल बॉक्स खुला है हमारा इनबॉक्स एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर करना है आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप करना चाहते हैं तो। नंबर नोट कर लीजिए 9868686753 पर करना है आपको मैसेज। लिखेंगे क्या ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जैसा है दस्तूर मुझे तो याद दिलाना ही है। अपना नाम लिखेंगे, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गाना कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं ये आप लिखकर भेजेंगे, साथ ही खूबसूरत शेरो शायरी की फरमाइश मेरी है आपसे, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ शामिल करूं आपके ईमेल और मैसेजेस जो कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हमारे पास पहुंचने लगे हैं। आइए सुन लेते हैं आज का पहला गाना, बड़ा ही खूबसूरत है और आज के इस खूबसूरत मौसम पर ना बिल्कुल सटीक बैठता है। बेईमान है थोड़ा मौसम, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और

और देखिए जरा स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर होता है, ये हमें बड़े ही खूबसूरत ढंग से बताया है, लिखकर भेजा है सतप्रकाश सनोठिया जी ने रोहिणी दिल्ली से। तो क्या लिख रहे हैं सुनिए। स्वाभिमान तो ठीक है, पर ध्यान रहे ये बात, कहीं बदल न जाए ये अभिमान में ढलती रात। स्वाभिमान एक दीप है जो देता है प्रकाश, अभिमान वो आग है जो कर देती है सर्वनाश। स्वाभिमान का अर्थ है खुद का आदर करना, परिस्थिति चाहे जो हो गलत राह न धरना। सिर न झुके अन्याय के आगे यह संकल्प है, पर अभिमान तो कहता है मेरा न कोई विकल्प है। स्वाभिमान में नम्रता बहती सरिता जैसी, अभिमान में अकड़ है सूखी लकड़ी जैसी। स्वाभिमान तो जोड़ता है अपनों से हर तार, अभिमान वो तो तोड़ देता है हंसता खेलता संसार। बिल्कुल सही, 100% सही बात आपने लिखकर भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया सतप्रकाश सनोठिया जी आपका रोहिणी से हमें ये मैसेज भेजने के लिए। चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं भारत भूषण जी का। अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष इनके साथ शामिल हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े

हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी इनके साथ शामिल हैं। इन्होंने भी की है एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज हम शामिल करते हैं प्रवीण सोनी जी का। जगदीश जौहरी भी इनके साथ शामिल है। गुजरात गांधी ग्राम से भेजा है मैसेज और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम रोज सुनते हैं और बहुत पसंद आता है इन्हें कार्यक्रम। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मैसेज भेजने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब सुन लेते हैं अगला गाना। बड़ा ही प्यारा गाना है और इसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु ने, होली चौक उत्तम नगर से। एंजॉय।

और इस खूबसूरत गाने के बाद चलिए शामिल कर लेते हैं और कुछ ईमेल्स। चंडीगढ़ से एक मैसेज मुझे नजर आ रहा है, बड़ी ही खूबसूरत बात इसमें लिखी है कि मोहब्बतों की बरखा बरसे, ऊपर से मौसम भी मस्ताना, साज छिड़ेगा, धुन बजेगी, छाएगा अब खुशियों का तराना, श्रोताओं की शिरकत होगी, गीत संगीत का छाएगा नजराना, आओ इस शुर में श्रोता खो जाएं, कर दें सब कुछ सुहाना, हासिल होंगी बेशकीमती मोहब्बतें, पढ़ी जाएंगी जब ईमेल, शेरो शायरी के डिब्बे लोड करके पटरी पर आ चुकी रेल, क्या बात है, हमसे करे बेपनाह मोहब्बत गोल्ड, ये कर्ज कहां से उतारेंगे, हमने भी कसम ले ली साथियों, शिद्दत से और भी निखारेंगे, रोज गार्डन के तमाम गुलाब कर दिए एफएम गोल्ड, तेरे नाम खुशियों से भरा।

अनेजा परिवार हाथ जोड़कर करे तुझे सलाम। सतीश अनेजा जी और विमला अनेजा जी ने भेजा है ये खूबसूरत मैसेज और बहुत बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं आपको इस खूबसूरत बात और इस खूबसूरत मैसेज के लिए। चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। नरवेल महाराष्ट्र से आया है जो कि पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर जी ने भेजा है और इसके अलावा मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहरेकर इसमें शामिल हैं और इन्होंने भी की है एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश। विजय सुरलकर जी ने भी मोताला महाराष्ट्र से भेजा है मैसेज। रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर इनके साथ शामिल हैं और इनका फरमाइशी गीत भी लिखा हुआ है। अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है धर्मेंद्र छीपा जी का, भोपालगढ़ राजस्थान से भेजा है। लिख रहे हैं कि ना तो फरमाइश का गीत बचता है देखिए और ना ही आप हमारा मैसेज शामिल करते हैं। मसला तो गंभीर है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे और आपका पूरा मैसेज भी पढ़ेंगे। कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार इनके साथ शामिल हैं और चलिए इनकी शिकायत करते हैं दूर और सुनते हैं वही गीत जिसकी इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। फिल्म है कटी पतंग और बहुत ही प्यारा गाना है ये किशोरदा की आवाज़ में।

0: दर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़। लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

टूटे हुए ख्वाबों को फिर से सजाना, हौसला है तो हर मुश्किल में मुस्कुराना। हारेगा हर डर तेरे जुनून के आगे, बस तू अपनी हिम्मत को बनाए रखना। प्रकाश गोगिया जी ने भेजा ये मैसेज दिल्ली से, और हम कह रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज को भेजने के लिए। सतप्रकाश सनोठिया जी का मैसेज हम शामिल कर चुके हैं, तो चलिए अगला मैसेज हम देख लेते हैं किसका आया है हमारे पास। कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कि मैडम जी, हम अपनी बारी का इंतजार करते करते थक गए हैं, प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है पर मैसेज शामिल नहीं होता। एक प्रॉब्लम कह लीजिए या छोटी सी प्यारी सी शिकायत मेरी भी है आप लोगों से कि अलग अलग मैसेजेस आप भेजते हैं, एक ही नाम लेकिन उसमें शामिल होते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया था, लेकिन ये आपने दूसरा मैसेज भेजा है। इसमें क्या होता है ना कि जो ईमानदारी से सिंगल मैसेज भेजते हैं उनके मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गलत है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। कृष्ण मेहरा जी का, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा इसमें शामिल है, कुणाल मेहरा भी शामिल है, और बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भेजी है इन्होंने दादरी गेट भिवानी से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगला मैसेज कुमकुम गुड़िया विजय सुरलकर, अब देखिए फिर वही हुआ ना, विजय सुरलकर जी आपका मैसेज में शामिल कर चुकी हूँ और ये नया मैसेज आपने भेजा है। अगला मैसेज हम शामिल करते हैं सईद अब्बासी साहब का, निगहत परवीन अब्बासी इनके साथ शामिल हैं, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान भी शामिल हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से भेजा है मैसेज और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से भी आया है मैसेज। और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन इसमें शामिल है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान इसमें

शामिल हैं। और चलिए इसी के साथ अगला मैसेज भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। किसका? सुदर्शन मुखी जी का। अनीता मुखी और सिमरन मुखी भी इसमें शामिल हैं। शांति नगर सोनीपत से आया है मैसेज और बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जिंदगी में हमेशा प्रकाश देती है। बिल्कुल सही बात है। और अगला मैसेज कस्बा गुन्नौर यूपी से आया है। लिखते हैं कि आज मेरे बेटे फैजी खान का बर्थडे है जो कि विदेश में है और वो एफएम गोल्ड मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद फैजी आपको, हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन और आने वाला वक्त बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही अच्छा हो, आपका हर सपना पूरा हो। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा की ओर से आया ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं इससे पहले कि हम सुने अगला गाना। मदन गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, माफ कीजिए, मदन चक्रवर्ती नाम है इनका और राजेंद्र चड्ढा इसमें शामिल हैं। नागलोई दिल्ली से आया है मैसेज। सुषमा श्रेष्ठा, पुष्पा पगधरे भी, माफ कीजिए ये गायक का नाम लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये मैसेज, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से एक बार नाम पढ़ देती हूँ। मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा जी ने भेजा मैसेज नागलोई दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज को भेजने के लिए। सुहेल शेख ने भी अभी अभी मैसेज भेज दिया है, मोताला बाजार से बबलू शेख, शगिर शेख, वजीर सोहेल, सैयद तहमूर, शामीर और सैयद अजलान इसमें शामिल हैं। आपका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। उग्रसेन यादव जी का भी मैसेज शामिल हो चुका है और शकुंतला यादव गरिमा इसमें शामिल है। न्यू दिल्ली से आया है ये मैसेज और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो चलिए मुकेश कुमार जी को भी शामिल कर लेते हैं। ऋषभ भोलू रामनगर से आया है ये मैसेज, बिहार से, और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। बबलेश पवार जी ने भी मैसेज किया है, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मधु किरण जी का भी मैसेज आया हुआ है, लिख रही हैं कि आपको दूर दूर के श्रोताओं के संदेश तो पहुंच रहे हैं लेकिन हमारा नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कैसे जी, देखिए पहुंच गया और मैंने पढ़ भी दिया। मधु किरण भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा इस मैसेज में शामिल है, दिल्ली से आया है ये मैसेज। चलिए चलिए चलिए, अब वक्त बहुत कम बचा है, अगला गाना हम थोड़ा सुन पाएं इसके लिए चलिए शामिल कर लेते हैं कि किसने ये भेजी है फरमाइश हमारे पास। तो सुरेश नारंग, आशु, सोनाली ने भेजी है इस गाने की फरमाइश सहारनपुर चंद्रनगर से। सुनिए ये गाना, मैं मिलूंगी आपसे ठीक 11:10 पर। तस्वीर होगा प्रोग्राम, उससे पहले आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उससे भी पहले यानी अभी सुनिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत गाना। फिल्म रजनीगंधा से आवाज मुकेश जी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। संसद भवन में आज आयोजित बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा हुई।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौता किसानों के हित में है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के लिए ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष अफ्रीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित भी करेंगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब

0: अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। हम मिल रहे हैं एक बार फिर और प्रोग्राम शुरू हो चुका है तस्वीर, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका स्वागत। तो हो जाइए तैयार निकलने को एक ऐसे सफर पर जो यकीनन आपके और मेरे लिए भी रहेगा यादगार। करेंगे खूबसूरत वादियों की सैर, साथ ही गवाह बनेंगे उस जादुई नजारों की भी जिन्हें कुदरत ने बड़ी फुर्सत और कारीगरी से नवाजा है। चलेंगे एक ऐसी जगह जहां की सर्द हवा जब गालों को छूती है तो शरीर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। बातें करेंगे सफेद धुंध, चीड़ और देवदार के ऊंचे पेड़ों के संग, और निहारेंगे खूबसूरत डलहौजी की तस्वीर का हर रंग।
1: जी।

हिमाचल प्रदेश और उसका चंबा जिला, बस वही मौजूद है। बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम है डलहौजी, जिसे क्वीन ऑफ द हिल्स यानी पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई है लगभग 1970 मीटर यानी करीब 6460 फीट। कैथलॉग, पोर्ट्रेस, तेहरा, बकरोटा और बोलुन, इन पांच पहाड़ियों से घिरे रहेंगे आप जब पहुंचेंगे डलहौजी, जो कि बहुत आसान भी है। बाय ट्रेन आएंगे पठानकोट रेलवे स्टेशन, जो डलहौजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। यहां से डलहौजी के लिए आपको सीधी बसें या प्राइवेट टैक्सीज आराम से मिल जाएंगी। बाय रोड दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहरों से सीधी बसें आपको डलहौजी के लिए मिल जाएंगी। और बाय एयर अगर आप आते हैं तो आपकी फ्लाइट लैंड करेगी पठानकोट एयरपोर्ट पर ही, जो अगेन 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मेन कमर्शियल एयरपोर्ट है वैसे गगल एयरपोर्ट। बातों का सिलसिला थमेगा नहीं, यूं ही रहेगा जारी, लेकिन अभी आ गई है एक और ये वाला खूबसूरत गाना सुनने की बारी।

जी बिल्कुल, पर्वत के पीछे और चंबे दे गांव ही लेकर आ गई हूँ मैं आपको, जहाँ खूबसूरत डलहौजी की कर रहे हैं सैर और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तस्वीर। अब से लगभग 250 साल पहले हिस्टोरिकली असल में डलहौजी नाम का कोई भी इलाका, कोई भी जगह नक्शे पर थी नहीं, बल्कि ये पूरा पहाड़ी इलाका चंबा रियासत ही कहा जाता था और यहाँ के राजा चढ़त सिंह के अधीन आता था। मतलब साफ है कि अगर डलहौजी पहाड़ों की रानी है तो चंबा उसका मायका है। लेकिन फिर अंग्रेजों को ये इलाका और यहाँ की ठंडी हवाएं इतनी पसंद आईं कि उन्होंने इस इलाके को राजा से ले लिया और बना लिया अपनी आरामगाह। लॉर्ड डलहौजी जो ब्रिटिश काल में भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर आगे चलकर ये जगह जानी जाने लगी।

और एक दिलचस्प फैक्ट यहाँ पर यह है कि खुद लॉर्ड डलहौजी अपने जीवन काल में कभी यहाँ नहीं आ सके, लेकिन हमारा बॉलीवुड इस जगह की खूबसूरती को पहचानने में बिल्कुल पीछे नहीं रहा। फिल्म कोयला से अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, जिसके कई सीन्स और गाने यहीं डलहौजी में ही शूट किए गए थे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न

0: करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी की चल रही है सैर और प्रोग्राम है तस्वीर, जहां मैं यानी नाज अब आपको बताने वाली हूं कि किस मौसम को आपको चुनना चाहिए डलहौजी आने के लिए। तो गर्मियां बेस्ट रहेंगी क्योंकि मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी के मुकाबले यहां डलहौजी में आपको मौसम काफी ठंडा और सुहाना महसूस होगा और आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। अक्टूबर से फरवरी के बीच यहां पड़ती है कड़ाके की ठंड, तो अगर स्नोफॉल को करना चाहते हैं आप इंजॉय, देन आइए, सर्दियों में आपका स्वागत है। और देखिए बर्फ की सफेद चादर से ढके खूबसूरत डलहौजी को। चंबा घाटी और धौलाधार पर्वत के नजारे इस दौरान बड़े ही, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जिस पर चार चांद लगाती है घुमावदार रावी नदी।

और गर्मियों में अगर आप बना रहे हैं डलहौजी का प्लान, तो आपको बता दूं कि एडवेंचरस और एक जादुई वंडरलैंड जैसा आपको लगेगा ये सर्दियों में। तो मौसम चाहे कोई भी हो, डलहौजी आने से गुरेज नहीं करना है, क्योंकि डलहौजी की हर बात निराली है। डोंट वरी, डलहौजी की हर एक खासियत हम जानेंगे, बात करते रहेंगे। उससे पहले सुनेंगे अगला गाना, जो कि है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। मोहम्मद रफ़ी साहब की आप आवाज़ सुनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी साहब के बोल। याद है ना, आज आनंद साहब का जन्मदिन है, तो चलिए करते हैं उन्हें याद और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। साथ ही उठाते हैं डलहौजी की खूबसूरती से एक बार फिर पर्दा।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

और नाम मेरा यानी नाज का भी बदल दीजिएगा अगर डलहौजी आकर आप इसके मुरीद ना हो जाएं तो। नेचर की ब्यूटी से लबरेज होने के साथ साथ डलहौजी कॉलोनियल एरा और उसके आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना भी है। उस समय के कई चर्च आप यहाँ पाएंगे, साथ ही तिब्बतियन कल्चर की झलक भी आपको यहाँ पर दिखेगी जो सोने पर सुहागे का काम करती है। इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला छोटा सा शहर खजियार भी यहीं पर है, डलहौजी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, जो अपने पिक्चर परफेक्ट घास के मैदानों के लिए जाना जाता है।

बीच में है एक खूबसूरत झील जो इस तस्वीर को और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, जोरबिंद और हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और साथ में एंजॉय करिए अभी ये अगला गाना जो इस सफर को बनाएगा और भी कहीं ज्यादा खूबसूरत।

0: रोजाना सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

डेनकोंड पीक अब आपको लेकर चल रही हूँ, जो कि डलहौजी की सबसे ऊंची चोटी है और जिसे सिंगिंग गिल भी कहा जाता है। फुलानी मंदिर में देवी माँ के दर्शन भी आपको यहाँ पर होते हैं, साथ में कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा भी आप इस जगह पर ले सकते हैं। काला टोप, जिसका मतलब होता है काली टोपी, इसी नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ यानी डलहौजी में, जो कि नेचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए एक और बेहतरीन जगह है। साथ ही आप दीदार कर सकते हैं चमेरा झील का भी, जिसे चंबा झील भी कहते हैं। काफी मशहूर पिकनिक स्पॉट है जो बोटिंग या फिर दूसरे वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है और आप इनका हिस्सा आराम से बन सकते हैं।

साच दर्रा जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज के ऊपर से होकर गुजरता है, वहां जरूर जाइएगा, क्योंकि फिर दोबारा ये मौका बने ना बने, आप इस सफर पर निकल पाए या ना निकल पाए, कोई गारंटी तो नहीं है ना। देखिए, डलहौजी को चंबा और पांगी घाटियों से जोड़ने का काम ये दर्रा करता है। डलहौजी से लगभग 150 किलोमीटर दूर ये उत्तर भारत में पार करने के लिए सबसे मुश्किल दर्रों में से एक है। साथ ही एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बढ़िया स्पॉट भी है।

साथ ही पंचपुला और सतधरा वाटरफॉल्स भी दो ऐसी जगहें हैं यहाँ जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। डलहौजी के गांधी चौक से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है पंचपुला, जिसके नाम का मतलब है पांच पुल। ये जगह बहते झरने और हरी भरी हरियाली के संगम के लिए जानी जाती है। फिर बात करें सतधारा फॉल्स की तो ये भी बड़ा खास है। माना जाता है कि इसके पानी में मेडिसिनल वैल्यूज काफी ज्यादा है, जो कई बीमारियों या तकलीफों को दूर करने की ताकत रखता है।

बीजी पार्क एक और शांत और बेहद खूबसूरत जगह है जो कि डलहौजी की शान है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी का सम्मान करने के लिए इस पार्क को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, जहां भारतीय सेना से जुड़े टैंक, आर्टिलरी और हथियारों के साथ साथ पुराने मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी आप देख सकते हैं। भारत की डिफेंस हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग और कमाल की रही है, इसकी झलक ये पार्क आपको दिखाता है। इसके बाद आप आइए सेंट जॉन चर्च भी, जो कि साल 1863 में बना था और डलहौजी का सबसे पुराना चर्च भी है। ये गांधी चौक पर इसकी मौजूदगी है, जो फोटोज क्लिक करने के लिए आपको एक बेहतरीन लोकेशन देता है।

एक मानी जाती है। इसके साथ ही गांधी चौक भी काफी रौनक वाली सड़क है, जिसे ही यहाँ की मॉल रोड भी कहा जाता है। और इतना सब करते हुए जब लगे भूख, तो एंजॉय कीजिएगा ऑथेंटिक हिमाचली कुजीन से लेकर तिब्बतियन और ब्रिटिश एरा से इंस्पायर्ड बेकरी आइटम्स को भी। ट्रेडिशनल हिमाचली स्वाद आप चखेंगे मडरा, सिड्डू, भे और चंबा चूक के जरिए, जबकि तिब्बतियन स्वाद आपको मिलेगा थुक्पा और मोमोज में। सर्दियों के मौसम में यहाँ मिलने वाली लोक कंगड़ी चाय और गर्मा गर्म सूप पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब मुझे यानी नाज को दीजिएगा इजाजत, लेती हूँ आपसे विदा, करती हूँ प्रॉमिस कि फिर मिलूंगी आपसे फिर किसी नए सफर पर किसी और खूबसूरत तस्वीर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए FM गोल्ड के साथ। नमस्कार।

ट्रेडिशनल कश्मीरी शॉल, बैग्स, कालीन या फिर खरीदने हो खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, आप जाइए मोती टीबा के तिब्बतियन मार्केट, जो डलहौजी में शॉपिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई

संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के

0: आंगन।
1: नमस्कार दोस्तों, मिर्जा गालिब ने क्या खूब
2: जी, आज तो दिल शायराना शायराना है, बड़ी मतलब आपकी तब लग रहा है ऐसे कि बिल्कुल
1: देखो क्या है कि रिमझिम फुहार पड़ रही है जी। तो ये तो मौसम ही है ख्वाहिशों के पैदा होने का
2: जी,
1: तो कोई भी बात करने से पहले श्रोताओं से अपना तारुफ तो करा दें। तो नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पुरी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। मेरे साथ हैं
2: रश्मि कुकरेती। और श्रुति जी, आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और FM गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी नमस्कार। और आप सभी को बता दें कि आप हमारे साथ हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर, इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमसे आप जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर, और डिजिटल परिवार के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं AIR न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो जहां भी आप हो हम आपके साथ हैं।
2: और श्रुति जी, साथ तो हैं लेकिन साथ में सवाल भी हैं, है ना? जिंदगी जब चलती है तो सवाल भी साथ होते हैं।
1: मुझे लग रहा है आप ख्वाहिशों से संबंधित सवाल ही पूछ रहे हैं।
2: भाई आपने ख्वाहिश की बात शुरू किसने की थी, आप ही ने ना? तो भाई ख्वाहिश से जुड़ा ये सवाल है कि क्या आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है, या कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो आखिरकार पूरी हो गई, यानी कि अपनी इच्छाओं के बारे में हमें बताइए।
1: जी बिल्कुल, ये जज्बात, अपनी कहानी हमसे जरूर साझा कीजिए। हमारी ईमेल आईडी हम आपको बताए देते हैं, fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga, ga स्टैंड्स फॉर घर आंगन, @gmail.com।
2: और श्रुति जी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाती तो मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है।
1: तो भीगी लग ही रही है, पर मेरी ख्वाहिश है कि बारिश हो तो मैं खूब भीगू। अरे वाह, तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को और बारिश में भिगाते हैं उनको भी। चिराग फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: जरूर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करिए, क्योंकि दिल में जो रह जाता है वो बोझ बन जाता है और जो बाहर आता है वो कला बन जाता है।
1: हाँ, और जब वो कला उतरती है कैनवस पर तो वो तस्वीर बन जाती है।
0: और यही तो हम कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशें हमसे साझा करिए।

0: अनंत है
1: भाई। श्रुति जी, ये तो हमारे जो भारतीय दर्शन है, अब यादव जी ने वो कह दिया कि भाई गीता भी तो यही कहती है कि इच्छा रहित कर्म की ओर गीता प्रेरित करती है कि आप अपने कर्म करते रहिए और इच्छा मत रखिए। लेकिन हमारी जो बात थी कि ख्वाहिश की, तो बात तो ख्वाहिश उन्होंने बोल भी दी, लेकिन मेरे साथ जुड़ गई है सुरभि, वो कह रही है मयूर विहार से कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखना, आज वो पूरी भी हो गई है, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं
0: ये
1: है।
0: ये तो सच में क्या बात है, बहुत ही प्यारी ख्वाहिश और बहुत ही प्यारी खुशी होती है जबकि तमन्नाएं पूरी होती हैं। और देखिए बारिश हो रही है और इससे हमारी जो धरती माँ है वो भी प्रसन्न हो रही है, धरती माँ की ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो धरती हमारी माँ है और माँ से बड़ा कोई देवता नहीं, जो धरती को पूजे वही सच्चा मानव कहलाता है। और बात है त्रिपुरा के एक बेहद खूबसूरत पर्व की जिसका नाम है खारुची पूजा। ये पर्व 14 देवी देवताओं की पूजा को समर्पित है जिसे चतुर्दश देवता भी कहा जाता है और ये पूरे 7 दिनों तक अगरतला में मनाया जाता है। आपने सुना है इस बारे में रश्मि जी?
1: श्रुति जी, बहुत ये दिलचस्प पर्व है। ये खारची शब्द जो है दो त्रिपुरी शब्दों से मिलकर बना है, खार और ची, जिसका अर्थ होता है पाप को धोना, यानी ये पर्व धरती और मन दोनों की शुद्धि के लिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो देवताओं को हावड़ा नदी में स्नान कराने से होती है, फिर उन्हें फूलों और सिंदूर से सजाकर मंदिर वापस लाया जाता
0: है। और सबसे खास बात यह है कि

0: से बचने के लिए, तो कभी अपनी गलती छुपाने के लिए। उस पर लगता है कि एक छोटा सा झूठ क्या बिगाड़ देगा,
1: जी
0: लेकिन धीरे धीरे वही झूठ एक बड़ी आदत बन जाता है और फिर सच बोलने से ज्यादा झूठ बोलना आसान लगता है।
1: और यहीं से मुश्किल शुरू होती है श्रुति। एक झूठ को बचाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और फिर तीसरा, फिर इंसान दूसरों से कम खुद से ज्यादा उलझने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि झूठ किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव यानी विश्वास को बिल्कुल धीरे धीरे खोखला कर देता है। और एक बार भरोसा अगर टूट जाता है ना श्रुति, तो उसे दोबारा बनने में बहुत समय लगता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर झूठ किसी का दिल बचाने के लिए बोला जाए तब। मेरा मानना है कि पहले मन से पूछना चाहिए कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या इसी से किसी का भला हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और तभी झूठ बोलना चाहिए अगर जरूरत हो।
1: हम तो कहेंगे झूठ ना ही बोले तो अच्छा है। आज के समय में तो सच छिपाना पहले से वैसे ज्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए झूठ बोलने से पहले ये सोचिए कि अगर सच सामने आ गया तो क्या मैं अपने रिश्ते में विश्वास और आत्मसम्मान बचा पाऊंगी। और जवाब अक्सर पाएंगे कि आप नहीं ही होगा, तो फिर भाई आप झूठ की हद तक पहुंच चुके, मत कीजिए।
0: तो बिल्कुल आज एक संकल्प भी लेना चाहिए हमें कि अगर गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकारने का साहस रखें। और सच कभी कभी मुश्किल जरूर लगता है लेकिन मन को सुकून देता है, झूठ ना ही बोले। और क्यों ना हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक बहुत प्यारा सा गीत जो सबको बहुत पसंद था वो सुने।

0: शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म में।
1: हाँ, और वो कह रही थी कि भाई मैं मायके चली जाऊंगी, तो मायके तो जाना बनता है श्रुति जी, लेकिन अगर मायके का सफर रात का सफर है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ सेफ्टी टिप्स मैं चाहती हूँ आप बताएं।
0: अकेले भी अगर जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, पर उस पे हम बाद में बात करेंगे।
1: जी,
0: पहले हमारे पास एक मेल आया है, वो हम पढ़ लेते हैं। हमें सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से लिखा है और बड़ा अच्छी बात लिखी है। ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है।
1: भाई वाह,
0: कितनी बड़ी बात है। और ख्वाहिशों की सड़क बहुत लंबी होती है और जिंदगी में खुश रहना है तो अपनी ज़रूरत की गली में मुड़ जाओ। कितनी अच्छी बात है। और आगे लिख रहे हैं कि जिसमें संतोष नहीं है उसको दुनिया की कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती।
1: जी बिल्कुल, ख्वाहिश अगर मेहनत से रिश्ता जोड़ ले तो मंजिल भी कदमों में आ जाती है, और अगर सब्र का हाथ थाम ले इंसान तो हर मुश्किल भी राह बना जाती है। श्रुति जी, और हम फिर मायके जाने वाली बात कर रहे थे
0: रात, और देखो क्या है कि रात में अकेले सफर करना ना एक ऐसा विषय है जो हर उम्र की महिला से जुड़ा है।
1: जी बिल्कुल,
0: चाहे वो खुद यात्रा करती हो, उसकी बेटी या पोती, कोई भी करता हो, चिंता तो रहती ही है। कहते हैं ना कि साहस वो दिया है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, पर सावधानी वही हाथ है जो उस दिए की लौ को

0: आपने, और साथ ही भाई आपके फोन की जो बैटरी है वो चार्ज करके रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि फोन पूरी में पूरी बैटरी नहीं
1: बिल्कुल
0: होती,
1: बिल्कुल
0: और जो इमरजेंसी नंबर होते हैं जैसे 112 112 को अपनी स्पीड डायल में रखें। और
1: ये बहुत जरूरी
0: आजकल कई महिलाएं के जो सुरक्षा ऐप भी आते हैं, जैसे दिल्ली में जो हिम्मत ऐप है दिल्ली
1: हाँ,
0: पुलिस
1: दिल्ली
0: का,
1: पुलिस का हाँ,
0: वो जरूर अपने फोन में डाउनलोड करके
1: उसमें तो
0: रखें।
1: एक बटन पे अलार्म बज जाता है और पूरे परिवार को सूचना पहुंच
0: जी
1: जाती
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: है
0: बहुत जानकारी है आपको हिम्मत ऐप की।
1: जी जी जी और हमारे आसपास की ना बहुत नजर रखनी चाहिए, मतलब कहते हैं ना कि अपनी चारों आंखें, पीछे की भी और अंतःचक्षु भी और बाहर की आंखें भी खुली रखनी चाहिए। हेडफोन लगाकर या फोन में डूबे रहकर सफर नहीं करना चाहिए, ये खतरे को न्योता देने जैसा।

0: जी
1: कि कितने अलर्ट हैं हमारे
0: जी
1: श्रोता,
0: जी
1: प्रोग्राम सुनते हैं तो अच्छा
0: जी
1: लगता है।
0: काफी ज्ञानी भी हैं, लेकिन ज्ञान मिलता है किताबों से, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, देखो किताबों की खुशबू में बसी होती है सदियों की सोच, जहाँ हर गली में मिलता है ज्ञान का एक नया कोश। वो जगह जानती हूँ कौन सी है, मैं बताती हूँ तुम्हें।
0: क्या बात है, आजकल तो आप बातें भी कविताओं में कर रही है श्रुति।
1: हाँ देखो ना, और हम आज उसकी बात करेंगे जिसे भारत की किताबों की नगरी कहा जाता है, जो है कलकत्ता की कॉलेज स्ट्रीट। और इसके बारे में आपने सुना तो होगा, देखो ये मत बोलना नहीं सुना।
0: बिल्कुल सुना है श्रुति जी, और सच कहूं तो ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे बंगाली में बोईपाड़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किताबों का मोहल्ला, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड किताबों का बाजार भी माना जाता है।
1: ये गणेश चंद्र एवेन्यू से लेकर महात्मा गांधी रोड तक फैली हुई है, और यहाँ सड़क के दोनों ओर सैकड़ों छोटी बड़ी दुकानें और फुटपाथ पर बिछे किताबों के ढेर नजर आते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो यहां न मिले, पुरानी दुर्लभ और जो अब छपना बंद हो चुकी हैं, वो भी ये किताबें यहाँ पे ढूंढने से मिल जाती हैं।
0: वाकई श्रुति जी, सच में किताब प्रेमियों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा लगता
1: बिल्कुल,
0: होगा। और मुझे लगता है जो अगर मेरा मन होता ना, तो मैं

0: और श्रुति, मैं आपसे कुछ ये कहना चाहती हूँ कि भरोसे की एक कीमत होती है जो अंकों में लिखी जाती है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल.
0: यही कीमत कल हमारे हर सपने का रास्ता खोलती है जी।
1: क्या
0: और
1: कहना चाहती
0: भाई,
1: हूँ.
0: आजकल हर घर में सुनने को मिलता है क्रेडिट स्कोर के बारे में, ये
1: हाँ
0: क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है?
1: देखो, क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों की संख्या है जो 300 से 900 के बीच होती है, जो ये बताती है कि हमने अपने पुराने लोन क्रेडिट कार्ड का भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किया है. भारत में इसे सिबिल जैसी संस्थाएं जारी करती हैं और बैंक इसी अंक को देखकर तय करता है कि हमें इस व्यक्ति को लोन देना भी है या नहीं.
0: यानी ये जो सिबिल स्कोर है, ये हमारी वित्तीय साख का आईना है।
1: बिल्कुल
0: तो इसे इसका अच्छा स्कोर कितना माना जाता है? यानी कि आम तौर पर 700 या उससे ऊपर का स्कोर जो होता है दोस्तों, अच्छा माना जाता है। और इतना स्कोर होने पर जो है लोन जल्दी और आसान शर्तों पर मिल जाता है। और लेकिन स्कोर अगर कम हो तो बैंक थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या ज्यादा ब्याज दर भी लगा सकते हैं।
1: हाँ, तो अगर किसी को का अगर स्कोर कमजोर है और उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हम आपको बता दें. सबसे पहला और जरूरी नियम है कि हर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान जो है वो समय पर कर देना चाहिए, देर से नहीं करना चाहिए. और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

0: ये लेकिन एक बात माननी होगी रश्मि, कि आज हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं की ख्वाहिशों को जगा दिया है
1: जी बिल्कुल।
0: उन्होंने याद भी किया कि अपनी कौन सी ख्वाहिशें उनकी रह गई थी, पर अब समय हमसे कह रहा है कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें। तो अपनी अच्छी पुरानी यादों को हमारे साथ जोड़े रखिए, हमें ईमेल

0: कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic

कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड पर, साथ में है रजनी। आज हम एक ऐसे गीतकार की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इतनी

बख्शी आनंद प्रकाश वैद्य, जिन्हें हम आनंद बख्शी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 21 जुलाई 1930 को तत्कालीन पंजाब के रावलपिंडी में हुआ था। विभाजन के बाद इनका परिवार पहले दिल्ली, फिर पुणे और फिर मेरठ रहने के बाद फाइनली दिल्ली में बस गया। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको इस गीत के बाद, जो हमने चुना है फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाज है लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की।

0: बख्शी को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था, लेकिन इसे उन्होंने शौक तक ही रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में नौसेना में शामिल हो गए और इस दौरान जब भी उन्हें समय मिलता वो अपने जज्बात कागज पे उतारते और विभिन्न कार्यक्रमों में सैनिकों का मनोरंजन करते। गीत लिखते और पेश करते हुए उनके मन में गायक और गीतकार बनने की इच्छा पलने लगी और वो मुंबई आ गए। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको बॉबी फिल्म के इस सुपरहिट गीत के बाद, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

मुंबई पहुंच के आनंद बख्शी ने बहुत हाथ पैर मारे मगर उन्हें कुछ काम नहीं मिला और थक हार कर उन्होंने वापस नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उनका मन तो मुंबई में ही रह रहा था, इसलिए एक बार फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर मुंबई वापस आकर किस्मत आजमाने की कोशिश की और इस बार किस्मत ने उन्हें साथ दिया और उन्हें भला आदमी फिल्म में 4 गीत लिखने का मौका मिला जो कि 1958 में रिलीज हुई। मगर ना तो ये फिल्म चली और ना ही इसके गीत। फिर भी उन्होंने कुछ और फिल्मों में गीत भी लिखे और आखिरकार 1962 की फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ के गीतों ने उन्हें कामयाबी दिलाई। 1965

पहला आदमी फिल्म में चार गीत लिखने का मौका मिला जो कि 1958 में रिलीज हुई, मगर ना तो ये फिल्म चली और ना ही इसके गीत। फिर भी उन्होंने कुछ और फिल्मों में गीत भी लिखे और आखिरकार 1962 की फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ के गीतों ने उन्हें कामयाबी दिलाई। 1965 में आई हिमालय की गोद में इस फिल्म के गीत बहुत लोकप्रिय हुए और इसी साल आई जब जब फूल खिले फिल्म के गीतों ने तो धूम ही मचा दी।

जब जब फूल खिले की कामयाबी के बाद तो आनंद बख्शी ने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। इसके बाद तो मिलन आया सावन झूम के, आई मिलन की बेला, महबूब की मेहंदी, कटी पतंग, सीता और गीता, बॉबी, शोले, अमर प्रेम, आराधना, मेरा गांव मेरा देश, जूली से लेकर नगीना, लम्हे, हम, मोहरा, परदेश, ताल, मोहब्बतें और गदर तक उनका सफर बेहद शानदार रहा। 1995 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने पिछले सभी फिल्मों की कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये फिल्म बन गई। ये थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म की सफलता में इसके गीतों का अहम योगदान था, जिन्हें लिखा था आनंद बख्शी ने।

0: तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम न भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल और आज बात गीतकार आनंद बख्शी की। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि गीतकार बनने के साथ साथ उनके मन में एक गायक बनने की जो इच्छा थी वो भी थी, और ये जो सपना था गीतकार के रूप में, इस्टेब्लिश भी हो चुके थे आनंद बख्शी, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं पल रहा था और ये सपना उनका पूरा भी हो गया। उन्होंने महाचोर, चरस, बालिका वधू जैसी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। शोले फिल्म में गीत लिखने के साथ उन्होंने किशोर कुमार, मन्ना डे और भूपेंद्र के साथ एक कवाली भी गाई थी। ये कवाली विनाइल में तो थी लेकिन फिल्म में नहीं रखी गई थी। 1972 में आई फिल्म मोम की गुड़िया में बख्शी ने एक सोलो गीत गाया था और एक गीत गाया था लता मंगेशकर के साथ। तो यही गीत, इसकी एक झलक आपको सुनवाते हैं।

0: आई।
1: जीवन की संध्या में आनंद बख्शी को कई बीमारियों ने घेर लिया। 30 मार्च 2002 को 71 बरस की उम्र में आनंद बख्शी ने आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद भी ऐसी कई फिल्में आईं जिनमें आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे। 2008 में आई महबूबा शायद वो आखिरी फिल्म थी जिसके सभी गीत आनंद बख्शी के थे। फिलहाल अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग से।

आनंद बख्शी ने जी सिने अवार्ड्स और स्क्रीन अवार्ड्स के साथ साथ चार बार फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीता। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली उनकी फिल्में थी अपनापन, तेरे मेरे बीच में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ताल। वैसे तो ज्यादातर बड़े संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनका साथ सबसे ज्यादा लंबा और गहरा रहा। एक बार एक इंटरव्यू में संगीतकार लक्ष्मीकांत ने कहा था कि दूसरे गीतकार जहां एक गीत लिखने में 7-8 दिन लगाते हैं, वहीं आनंद बख्शी 8 मिनट में गीत लिख देते हैं। तो आनंद बख्शी का लिखा हुआ आज का आखिरी गीत दो रास्ते फिल्म से, और इसी के साथ मैं रजनी आपसे इजाजत चाहूंगी कलाकार बेमिसाल से, और इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे उर्दू में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोक

0: हो गए और कई लापता हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतालिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलविस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलविस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलजमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तिजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तिजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत मरकजी सरकार मुल्क में इम्तहानात मुनाकिद कराए जाने में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग यानी मंगल मिलन के दौरान वजीर आजम मोदी ने मुकाबला जाति इम्तहानात में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद का इदा किया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: बीजेपी के राज्यसभा के एमपी अशोक मित्तल ने, जिन्होंने पहली मर्तबा एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत तलबा के साथ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की आराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतालिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रेजाइडिंग अफसर सिंधा रे ने सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशसलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फा सिफर अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवाल शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में तआवुन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने में आए। जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे

0: तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपने अपने नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशुसलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नामची जिले में ज़ेरे तामीर टनल में हादसे के बाद सूरत-ए-हाल और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से आज सिक्किम के वज़ीर-ए-आला प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब तमांग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मरकजी सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सिक्किम के वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म की मदद, तशवीश और रियासत के साथ यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब तमांग ने कहा कि NDRF, SDRF, SSDMA, जिला इंतजामिया, मकामी पुलिस, रंगपो PHC की तिब्बी टीमें और मकामी बिरादरी मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की गरज से करीबी इश्तराक के साथ मुसलसल काम कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक जेर तामीर टनल के मुनदम होने के सबब जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। महलुकीन के कुनबों से ताजियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम के नामची जिले में जेर तामीर टनल में अफसोसनाक वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने महलुकीन के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने महलुकीन के रिश्तेदारों के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत की दुआ की, साथ ही फंसे हुए लोगों को बहिफाजत बचाए जाने और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सिक्किम के वजीर आला ब्रेन सिंह तमांग से बातचीत की है और नामची जिले में जेर तामीर एक सुरंग में जमीनी तोदे खिसकने के हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की है। वजीर दाखिला ने बचाव कोशिशों और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में शदीद से बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत ने आज रूसी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमीर लादानोव को तलब किया है। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लीव पर हमले के सिलसिले में तलब किया है। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें जाये हो गई थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। खबरें खत्म हुई।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed

0: involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses. In Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim chief minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल

सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया।

0: देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
2: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
4: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई।

0: संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़
0: भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र

पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक

0: बहुत सही कहा आपने आरती, और एक तरह से देखें तो फूल प्रकृति की सुंदर अनमोल देन है, और अपनी सुगंध और रंगों से वातावरण को मनमोहक बनाने का काम तो करती ही है। साथ ही साथ हमारा कार्यक्रम जो है वो किसानों के लिए है, और हम किसानों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो फूलों की जो खेती है वो किसानों के लिए सबसे अधिक आय देने वाला और लाभदायक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, और कम क्षेत्र में भी किसान भाई फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज का विषय भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है। आज का विषय है वो है फूलों की कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया हुआ है। तो आज की जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर ऋतु जैन। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: जी साथियों, और आपको बता दें कि कार्यक्रम किसान की बात में आप भी जुड़ सकते हैं, और कोई जानकारी अगर आप आज के विषय से जुड़ी जानना चाहते हैं, फूलों की कटाई से जानना चाहते हैं कुछ संबंधित, या उसके बाद उसका जो प्रबंधन है, मूल्य संवर्धन है, इस विषय पर कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप सीधे आज कॉल कर सकते हैं हमें। नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का स्टडी कोड है, इसके बाद नंबर डायल करें 2342108। एक और फ़ोन नंबर है 2342108। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर ऋतु से जान सकते हैं जो भी आज के इस विषय में आप जानना चाहते हैं। पर ध्यान रखें कि विषय से जुड़ा सवाल ही पूछें, ताकि आपका जो समय आपका भी नष्ट ना हो और हमारे बाकी साथियों का भी समय नष्ट ना हो। डॉक्टर साहिबा, जब तक आ रहा है हमारे कॉलर्स का कॉल आता है, लेकिन जिज्ञासा हमारे मन में भी बहुत होती है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि अभी फूलों की बात चल रही है, तो सबसे पहले अगर हम इसका व्यावसायिक स्तर पर अगर हम देखें तो क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है।
3: जी देखिए, अगर हम बात करते हैं फूलों की, तो आपको पता है कि फूलों का उपयोग हमारे जीवन में जन्म से लेकर अंत समय तक होता है। तो फूल हमारी शुरुआत, जीवन की शुरुआत भी फूल से होती है और अंत भी फूल से होता है। तो फूल हमारे बहुत सारे काम आते हैं। सबसे पहले बात करें तो फूल जो है हमारे पूजा पाठ में काम आते हैं, मंदिरों में काम आते हैं, शादी में, त्योहार में, किसी साज सज्जा करने के लिए, उसके अलावा किसी का स्वागत करने के लिए, उसको पुष्प गुच्छ बनाकर देने के लिए, कोई भेंट देने के लिए, कोई माला बनाने के लिए। साथ ही साथ इसके अलावा फूलों का बहुत सारा इस्तेमाल जो है उसके बहुत सारे उत्पाद बना के किया जा सकता है। जैसे ये जो मैंने बात की, ये तो ताजे फूलों की बात की, इसके अलावा हम फूलों का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, जिसमें हम फूलों के

0: ज़्यादा जब हमारा फूल खिल जाता है तो हम उसे कट फ्लावर के लिए काटते हैं, और ये हर फसल के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि हम गुलाब की बात करें तो गुलाब में हम लाल रंग के जो फूल हैं वो उसकी पहली पंखुड़ी जब खुलती है और उसके सारे जो कैलिक्स होता है, जो उसकी हरी वाली पंखुड़ियाँ होती हैं वो रिफ्लेक्स हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो हार्वेस्ट करते हैं। पीले वाला फूल जो है वो बड शेप में ही रहता है, कली की शेप में रहता है, तब उसको हार्वेस्ट करते हैं। और जो सफ़ेद रंग का गुलाब होता है उसकी दो पंखुड़ियां खुलने के बाद उसकी कटाई करते हैं। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपने दूर वाली मार्केट के लिए भेजना है तो बड कली की अवस्था में ही हम फूलों को काटते हैं। इसके अलावा कुछ जो हमारे स्टैंडर्ड और स्प्रे टाइप के फ्लावर होते हैं, जैसे कि कार्नेशन की बात करें, कार्नेशन की बात करते हैं तो हम उसे जो स्टैंडर्ड टाइप होता है उसे हम पेंट ब्रश स्टेज पे काटते हैं, और जिसका मतलब होता है कि जब अगर आप फूल की कली को देखें तो उसमें आपको एक क्रॉस जैसा बना नजर आए कि दोनों तरफ से कट जैसा लगा हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको फूल का रंग दिखाई दे जाएगा कि इस कलर की कली है, वो एक अवस्था होती है। या कट फ्लावर के लिए इस्तेमाल करना है तो हम काटेंगे उसको जब उसके नीचे से जो पंखुड़ियां हैं दो तीन फ्लोरेट जो हैं वो कलर शो करने लगेंगी तब हम उसे काटेंगे। पर अगर हमें उसी फूल को लूज फ्लावर के लिए काटना है या गुलाब को लूज फ्लावर के लिए काटना है जो खुले फूल का इस्तेमाल करने के लिए, तो हम उसको पूरा खिलने देंगे, पूरा खिलने के बाद हम उसको काटेंगे। दूसरी बात, जब भी हम फूल काटते हैं या तोड़ते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमारी जो कैंची है या जो चाकू है वो बहुत तेज धार वाला होना चाहिए। बार बार कट नहीं लगाना चाहिए पौधे को, एक ही बार में उसे क्लीन कट से काट देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपने कोई डिजीज बीमारी युक्त आपका कोई पौधा है और गलती से उससे फूल काट लिया है तो आप इमीडिएटली अपने स्केचर को, कैंची को या चाकू को किसी अल्कोहल से या सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके दूसरे जो पौधे हैं वो बीमार ना हो। तीसरी बात, फूलों की कटाई या तोड़ाई या तो सुबह के समय कीजिए या लेट शाम, और ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब फूलों की नमी भी निकल जाती है और उसमें रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो खाना है फूलों के अंदर स्टोर फूड वो कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि फूल की गुणवत्ता भी कम हो जाती है और उसकी शेल्फ लाइफ, घटक आयु जिसे हम बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। तीसरी बात, फूल जब हम काटते हैं, डंडी वाले फूलों को काट के इमीडिएटली आप एक बकेट में रखें जिसमें पानी हो, साफ पानी हो, ठीक है, ताकि उससे जो आपका फूल है उसमें, उसकी डंडी में हवा नहीं चली जाए। हवा जाने से क्या होता है कि स्टेम ब्लॉक हो जाता है, मतलब फिर वो पानी नहीं ले सकता, जैसे एक बबल बन गया उसके अंदर ना, डंडी के अंदर, तो पानी कैसे जाएगा, बबल, एयर बबल आ गया, तो इसलिए इमीडिएटली काटो और पानी में रख दो, और उसको जमीन पे नहीं रखना है। अगर आप जमीन पे रखेंगे, मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु विषाणु उसके अंदर, जो डंडी है उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, उसकी वजह से स्टेम प्लगिंग हो जाती है, बैक्टीरियल वैस्कुलर प्लगिंग उसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी पानी का अवशोषण ऊपर नहीं होगा। और जब आपने कट फ्लावर को ला के मार्केट से पानी में डालते हैं, कई बार आप देखते हैं ना कि फूल लाए तो ठीक था बट वो आपका फूल में पानी में रखने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो उसका यही सब कारण होते हैं, या तो वैस्कुलर प्लगिंग बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है या हवा की वजह से हो जाती है। फूलों को काटकर या तोड़कर ठंडी जगह पर रखें, छायादार जगह पर रखें, उन्हें कभी भी धूप वाली जगह पे नहीं रखना है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कटाई और तोड़ाई के समय पर।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कटाई के समय में ये बातें ध्यान रखनी है, लेकिन कटाई के बाद एक चीज़ आपने कही कि ठंडी जगह पे रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका भंडारण करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: जी,
1: तो किस तरह से फूलों का भंडारण किया जाए, क्या कुछ नई तकनीकें इस क्षेत्र में आई हैं, उनके बारे में बताएं आप प्लीज़।
0: जी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक फूल कट के मार्केट तक नहीं पहुंच गया है तो उसका भंडारण करना बहुत जरूरी है, पर भंडारण से पहले भी फूलों का वर्गीकरण करना या श्रेणीकरण करना, यानी कि जिसे हम ग्रेडिंग कहते हैं, तो ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करना बहुत जरूरी है। और उनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है कि आपका जो फूल है उसकी डंडी की लंबाई कितनी है, फूल की लेंथ कितनी है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से एक तो वर्गीकरण होता है। दूसरा कि उसकी जो कली है, कली की यूनिफॉर्मिटी कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके बड का साइज कैसा है, ठीक है, उसकी बड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके आधार पे किया जाता है। तीसरा, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे एक ही स्टेम पे बहुत सारे फूल होते हैं, जैसे कि ग्लैडियोलस हो गया आपका, ट्यूबरोज हो गया, तो उसमें हम नंबर ऑफ फ्लोरेट्स पूरे फूल में कितनी पूरी डंडी में कितने फूल हैं।

उसके आधार पे भी करते हैं कि जिसमें जितनी ज्यादा फ्लोरेट हैं वो ए ग्रेड में जाएगा, उससे कम वाला बी ग्रेड में, उससे कम सी ग्रेड में। तो इस तरह से भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद आप वर्गीकरण तो आपने कर लिया, बट ये तो वर्गीकरण की बात हुई, बट हम फूलों को पहले हमने छाया वाली जगह पे रखा और हम कोशिश करेंगे कि रेफ्रिजरेटेड वैन या कोई भी ठंडी उसमें हम फूलों का ट्रांसपोर्ट करें स्टोरेज वेयर तक, जहां पर भी हमें उसे स्टोर करना है, स्टोर हाउस तक। ठीक है, स्टोर हाउस में भी आपके पास ठंडी रेफ्रिजरेशन का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि प्री कूलिंग करते हैं हम फूलों की, मतलब जो खेत की ऊष्मा होती है फूलों में उसको निकालते हैं, ताकि जितना उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा फूल का, तो उसकी श्वसन दर और उसकी वाष्प उत्सर्जन दर जो है वो कम हो जाएगी, और उससे फूल में जो अपने आप जो सस्य क्रियाएं चल रही हैं वो कम हो जाएंगी, और उसके कम होने से क्या होगा कि फूल की घटक आयु बढ़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले प्री कूलिंग करना है। प्री कूलिंग करने के बाद, प्री कूलिंग भी दो तीन तरह से होता है, फोर्स्ड एयर कूलिंग है, एयर कूलिंग है, या वाटर कूलिंग है। तो इस तरह से प्री कूलिंग करने के बाद

0: आपकी बात करते हैं तो उसमें हम लहरदार गत्ते का इस्तेमाल करते हैं, उससे बांध देते हैं रबड़ बैंड लगा के, साथ ही साथ हम उसको कॉरुगेटेड फाइबर बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर हम उस फूलों को रख के और कोल्ड स्टोरेज में हम उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर, मतलब ये एक पूरा एक चेन है, कोल्ड चेन स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। और ये भी इसमें भी दो तीन चीज़ें बड़ी ध्यान रखने लायक हैं कि फूल कहाँ का है। अगर फूल टेम्परेट जोन का है तो हम उसको 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक उसका भंडारण करेंगे। अगर वो ट्रॉपिकल जोन का है तो 7 से 15 डिग्री पे उसको स्टोरेज करेंगे, और अगर सब ट्रॉपिकल जोन का है तो 4 से 7 डिग्री पे हम उसका स्टोरेज करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने टेम्परेट वाले को ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दिया तो वो खराब हो जाएगा, और ट्रॉपिकल वाले को जो है आपने कम टेम्परेचर पर रख दिया तो उसमें फ्रॉस्ट इंजरी या चिलिंग इंजरी होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है।
1: जी डॉक्टर साहिबा, इतनी सारी बातें देखिए, अभी हमें मूल्य संवर्धन भी समझना है कि किस तरह से फूलों का किया जा सकता है, और काफ़ी कुछ हम जान ही रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है भारी भरकम चीज़ें हो जाती है, नुकसान की बात हो जाती है, संभालने की बात हो जाती है। तो अगर यूथ की बात करें या फिर आने वाले इस क्षेत्र में जो किसान आना चाहते हैं उनकी बात करें तो

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना से किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: पुतला बोल रहे हैं
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग अरे पहली वाली बात कहाँ
4: पर हम तो सब यही डाले हैं
3: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और ऊपर की कीमत भी
5: तो इन सब जगह पे ड्राई फ्लावर की बहुत सारा काम होता है बहुत सारे ड्राई फ्लावर के फूलों को सुखा के उनके उत्पाद बनाए जाते हैं तो इस तरह की ट्रेनिंग वहां से ली जा सकती है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट है फ्लोरिकल्चर के डिपार्टमेंट है जो समय समय पर ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं कृषि विश्वविद्यालय में और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से तो उन सब जगह से आपको ट्रेनिंग प्राप्त कराई जा सकती है उस प्रशिक्षण दिया जा सकता है
6: जी। और डॉक्टर साहब जैसे हम लोग मूल्य संवर्धन की बात कर ही रहे हैं तो एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ किसान भाइयों की तरफ से कि मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनाए जो कि किसान भाइयों के लिए सरल भी है और वो बना के उसका मूल्य संवर्धन कर पाए
5: जी। देखिए जहां तक बात की जाए सरलता की वो हमारे सीखने पे निर्भर करता है
6: जी।
5: है ना किसी को तो चांद पे जाना भी मुश्किल नहीं लगता और किसी को दो कदम आगे चलना भी लगता है कि बहुत भारी है तो ये तो हमारी सीखने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है।
7: और मूल्य समर्थन की बात आती है तो मुझे लगता है महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ चढ़ कर
5: जी
7: है।
5: जी जी
7: तो बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। समय डॉक्टर साहब क्योंकि कम बचा है तो इसलिए अब विषय को यहीं पर समाप्त करना होगा लेकिन वापस से जल्द ही इस विषय को और लेकर आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें भी बची हैं। साथियों उम्मीद है आज का विषय आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर रितु जैन प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी थी इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा
5: धन्यवाद।
7: तो साथियों फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती
6: मैं हूं गौतम
7: आपसे विदा लेते हैं नमस्कार।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला

0: उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे के बाद दोनों सदनों की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में पहले स्थगन के बाद 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच सदन में संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों का हालचाल पूछा। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में एचएस प्रणॉय का अभियान पहले दौर में ही समाप्त हो गया। उन्हें मलेशिया के लियोन जुनहाओ ने हराया। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and Rajya Sabha faced 3 adjournments each due to the opposition uproar. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of the paper leak of the NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House, but the opposition members continued with their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House reconvened after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued

आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं देख सकती हूँ हमारे ईमेल पर। शुरुआत करते हैं निसार अली के मैसेज के साथ। नौशाद सलमानी बेबी आलिया निसार सलमानी घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। बेबी आलिया आयान बाबू भी हैं आपके साथ और आप सुनना चाहते हैं अपने किसी दोस्त की पसंद का गाना, जैसे कि अभी हमने आपको सुनवाया। अफरोज शेख प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आप सुपौल से हमारे साथ हैं, यानी कि बिहार सुपौल से आप संदेश भेजते हैं। और मंगेश नारवड़े का भी मैसेज हमें मिलता है आपके साथ, और मुजक्किर और जरीफ अंसारी और सहारनपुर से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। मैसेज आता है हमारे पास ताज मोहम्मद का, और ताज मोहम्मद हरिद्वार से प्रोग्राम सुन रहे हैं महराज जहां गुलाम साबिर राही के साथ, और आपको प्रोग्राम ये पसंद आता है ऐसा आप लिखकर भेजते हैं। जॉन डिकोस्ट्रो का भी मैसेज आता है हमारे पास जनकपुरी सहारनपुर से, आपके साथ है रोजी पर्ल और विलिस डिकोस्ट्रो। और विजय सुरलकर का क्या कहना है, परख फिल्म से आप लता जी की आवाज में गाना सुनना चाहते हैं रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर के साथ। सतीश अनेजा अपने गाने की रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं, पन्ना की तमन्ना है किशोरदा और लता जी की आवाज में। आप चंडीगढ़ से बिमला अनेजा के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं। बिट्टू गगनेजा का भी मैसेज हमें मिलता है, और जलालाबाद वेस्ट से पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के साथ आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीने की राह फिल्म में बहुत अच्छे गाने हैं, और अभिजीत ग्वांकर राही और सविता प्रणीता सिद्धांत टुक टुक एकांश सुमित कुमारी ध्वनि इस गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं, जो अभी मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। तो ये गाना है आ मेरे हमजोलिया, बहुत ही खूबसूरत गाना है। अगर आप भी अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं आज के मन भावन में, तो आप जानते हैं क्या करना है, FM Gold AIRDelhi@gmail.com पर जल्दी से हमें ईमेल कर देनी है अपने गाने की रिक्वेस्ट के साथ। वैसे हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट शामिल करने की, और अगर नहीं हो पाता गाना आपका शामिल तो आपके नाम तो हम जरूर पढ़ देते हैं।

0: फिलहाल टाइम है एक ब्रेक का। ब्रेक पर से आएंगे और जानेंगे कि किसकी है अगली रिक्वेस्ट जो पूरी होगी आज के मन भावन में। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

बिल्कुल, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच गए हैं और देरी ना करते हुए आपके मैसेजेस शामिल करूंगी मैं। सुरेश चौरसिया प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपके साथ हैं श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला और फरुखाबाद से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई भी गाना सुन सकते हैं आप, यानी कि आपको सभी गाने पसंद है, मैं इसको ऐसे लूंगी। परमिंदर सिंह का मैसेज आता है हमारे पास, परमिंदर सिंह रंधावा, आप पारस मणि फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं लखनपाल रंधावा और सुरिंदर कौर रंधावा के साथ। अगला मैसेज हमारे पास आता है होली चौक उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु खोरवाल का, 20 साल बाद से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। वैसे आपने 2-3 गानों की रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है तो मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपका गाना भी आज हम ज़रूर प्ले करें यहाँ पर। अगला मैसेज शीशपाल वर्धन का हमें मिलता है और आप गाजियाबाद से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपको मन भावन सुनना बहुत पसंद है ऐसा आप बताते, सुहेल शेख प्रोग्राम सुन रहे हैं। और मुताला बाजार से आपके साथ हैं बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सुहेल, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान। और अगला मैसेज है हमारे पास हरजिंदर सिंह भाटिया का मैसेज हम शामिल कर चुके हैं, प्रताप वर्मा है हमारे साथ महावीर कॉलोनी सोनीपत से और आप मनभावन सुनना पसंद करते हैं। गणेश सूतर का मैसेज मिलता है हमें, आपके साथ हैं चेतन और सारिका, कोल्हापुर से आप जो गया आसमान से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। नवाब अहमद भारती हैं हमारे साथ, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब और बल्ली मारा से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आजा तेरी याद आई ये गाना आप सुनना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगला जो गाना है इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह ने जगराओं से लिखकर भेजी है, गोरा और काला फिल्म से, ये गाना आप सबके लिए।

0: आपको बिल्कुल धीरे धीरे नहीं बोलना है, आपको टाइप करना है अपना मैसेज और भेज देना है हमारी ईमेल पर fmgoldairdelhi@gmail.com।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

भाई देखते हैं अगला मैसेज किसका आया है, किसकी पसंद का गाना हम तक पहुंचने वाला है। मोहम्मद सईद अब्बासी मैसेज करते हैं बुलंदशहर से, आपके साथ है निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और परिवार के सदस्य। आसरा फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज पंकज शर्मा का हमें मिलता है और आप करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर इन सब के साथ, और इन सबके साथ आप मैसेज कर रहे हैं हमें, और मुझे लग रहा है कुछ टाइपो हो गई है, मतलब बहुत सारे डिजिट्स टाइप होके आ गए हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। यूनिस खत्री भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और शबनम, अकरम, तबरेज, फरजाना आपके साथ हैं, आप ठिकरी मध्य प्रदेश से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और अंकित कांगड़ा का मैसेज हमारे पास आता है, पारसमणि से आप गाना सुनना चाहते हैं। परमिंदर सिंह रंधावा, ये मैसेज हम शामिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सलीम अख्तर हैं हमारे साथ, आपके साथ रेशमा बेगम अलीगढ़ से, और कोई भी गाना आप हमारी पसंद का सुनना चाहते हैं। साथ ही मैसेज मिलता है हमें मोहसिन हाशमी का, और आप गंजडुंडवारा से नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम अंसारी के साथ प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं आपने हमें, उसके लिए शुक्रिया। अगला मैसेज जो हम तक पहुंचता है वो है नईम खान का, विष्णु गार्डन से प्रोग्राम सुन रहे हैं, उम्मीद फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। असलम, अकरम, निसार, अरमान, मुजस्सिम और सरून भाई आपके साथ हैं। साई गायकवाड़ का मैसेज मिलता है हमें, रोटी कपड़ा और मकान से गाना सुनने का रिक्वेस्ट आपने लिखकर भेजा है, और आपके साथ हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार गायकवाड़। और बता दें आपको कि अगला जो गाना है वो किसकी पसंद का है, संबंध फिल्म से प्रकाश गोगिया, अमन मणि त्रिपाठी और सुरेश नारायण त्रिपाठी सुनना चाहते हैं मुकेश साहब की आवाज में ये गाना।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: तो भाई मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। मधु किरण का मैसेज हमें मिलता है, और आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, किसके साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। आपने भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, वाह क्या बात है, हमारे बहुत पुराने लिसनर्स, आपका फिर से स्वागत। अनिल मोहन भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से। मोहम्मद इरशाद हैं प्रोग्राम सुनने वालों में, और खूबसूरत इमोजीज के साथ लिख भेजते हैं अपने परिवार का नाम। शाहजहां बेगम मरियम आपके साथ हैं, और कस्बा बिलराम से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। आफताब अंसारी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में, और हम किसी से कम नहीं इस फिल्म से गाना सुनना

0: बनाते हैं रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी के साथ। गंजडुंडवारा से आप हैं हमारे साथ अंकित कांगड़ा। नईम खान का भी मैसेज हमें मिलता है। नईम के साथ हैं असलम अकरम, निसार, अरमान और मुजस्सिम, सरून भाई। और अगला ईमेल अनिल जैन का हमें मिलता है। और आपके साथ हैं जैन साहब, सैयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम। बरसात की रात से आपने एक रिक्वेस्ट लिख भेजी है गाने की। अनवर सबरी प्रोग्राम सुन रहे हैं, शन्नू सबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर और जरीफ अंसारी के साथ। और मोहम्मद यूनिस खत्री भी प्रोग्राम सुन रहे हैं खंडवा से। आपके साथ हैं सादिक खत्री, अयूब खत्री। और आप सुनना चाहते हैं अपने किसी दोस्त की पसंद का गाना, तो बिल्कुल अभी बता देते हैं कि किसकी पसंद का गाना होगा अगला, लेकिन कुछ और नाम शामिल कर लेते हैं। राजकुमार डूडी हैं ग्राउंड फ्रांसी से हमारे साथ। आपके साथ पुष्पेंद्र कुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी भी हैं। बोधराज खोरवाल का मैसेज मिलता है हमें। और आप शरारत फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ। और इसी के साथ जो है अगले पेज पर हम पहुंच जाते हैं। मधु किरण का मैसेज हमें मिलता है और आप ही के साथ मैसेज आता है दिलीप रामेकर का। दिलीप रामेकर के साथ है रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार, अक्षय और रुद्रा रामेकर, नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, अशरफ अली, महेश अग्रवाल, सिराज मिथुन दिल्ली से प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और अनवर सबरी का भी मैसेज मिलता है जिसे हम शामिल कर चुके हैं। अल्तमाश खत्री हैं हमारे साथ, मुदस्सिर फिरदौस, हसन लाला, जुम्मा नगर, खंडवा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और अगली जो पसंद है वो किसकी होगी, 20 साल बाद इस फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं जयराम, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल।
1: करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद।

0: महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: जी, ढेर सारे संदेश आपके एक बार फिर पहुंच गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि हमारी ईमेल आईडी पर। और अगला मैसेज हमारे पास जो आता है वो है बोधराज खोरवाल का। मोहसिन हाशमी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके साथ हैं नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम। और इसके बाद जो अगला मैसेज हम तक पहुंचता है वो है फैज़ अहमद खत्री का। आपके साथ हैं साबिर मुल्ला जी, रफीक, बरगद बेल हुबली, कर्नाटक से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। दिनेश वर्मा भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। दोस्ताना फिल्म से आप करुणा वर्मा के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं और दोस्ताना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मधुकिरण का मैसेज मिलता है, दिलीप रामेकर हैं हमारे साथ। और अगला मैसेज जो हमारे पास आता है वो है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी का पिंगा वाला चौक से। और वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन का भी मैसेज हमें मिलता है बिहारी कॉलोनी से। अगला मैसेज मस्कीन दादा हमें लिखकर भेजते हैं और आपके साथ चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी। तो आपको बता देते हैं कि अगला जो गाना है वो कौन सी फिल्म से और किसने रिक्वेस्ट की है। काला पानी फिल्म से सुनना चाहते हैं भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष। ये बहुत ही प्यारा सा गाना,

0: जी, तो ढेर सारे हमने आपकी पसंद के गाने सुनवाए और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे रिक्वेस्ट भी होंगी जो शायद पूरी नहीं हो पाई होंगी, तो कोशिश रहेगी मेरी कि जाने से पहले आपके नाम ज़रूर मैं आज के मन भावन में शामिल कर लूँ। कौशल्या देवांगन प्रोग्राम सुन रही हैं और रोशनलाल देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन आपके साथ हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल ईमेल आपने भेजी, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया हमारे सभी लिसनर्स का हमें मैसेज भेजने के लिए। नवाब अहमद भारती प्रोग्राम सुन रहे हैं और अशोक डाले का मैसेज हमें मिला। आपके साथ हैं सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा। और अगला मैसेज पहुंचता है हमारे पास संजय ढींगिया का। आपके साथ हैं नमन अपार ढींगिया, बागपत से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। कमलकांत गुप्ता हैं प्रोग्राम सुनने वालों में और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता भी हैं आपके साथ। साधना गोयल हैं प्रोग्राम सुनने वालों में और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं श्रीपाल गोयल के साथ हरियाणा से। अनिल मोहन, मुकेश कुमार, अजीत भावसर, संदीप मक्कड़, कौशल्या देवांगन, भारत भूषण, नीटू मल्होत्रा, नबी हसन अब्बासी, सोहेल हसन, नवेद हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी, आप सब भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। फैज़ अहमद खत्री और अनवर साबरी का भी मैसेज हमें मिलता है और जॉन डिकोस्ट्रो, गिरीश बम, अजिंक्य बम, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। निसार अली का मैसेज हमें मिला, सभी ने प्रोग्राम को पसंद किया और बहुत से लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट भी लिखकर भेजी और कईयों ने कहा कि हम अपने दोस्तों की पसंद की रिक्वेस्ट सुनना चाहते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ अहमद खत्री, गुरमीत सिंह भी प्रोग्राम सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार और मैं मिलूंगी आपसे समाचारों के बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हमले के कारण बार

0: बार बाधित हुई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने नीट यूजीसी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल पूछा। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि यह मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल नई दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्ता पनबिजली परियोजना की एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभी तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इत्यादि पर चर्चा की। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के बारे में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय का अभियान पहले दौर में ही समाप्त हो गया। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में अपना मुकाबला हार गई हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak. The Lok Sabha and the Rajya Sabha each witnessed 3 adjournments due to opposition's uproar. When both the houses reassembled at 2 p.m. after the second adjournment, opposition members resumed their protests over the NEET issue. Amid the continued uproar, the chairs adjourned Lok Sabha and the Rajya Sabha for the day. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now known as Mangal Milan, was held in Parliament House today. During the meeting, NDA Alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth.
3: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
4: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
3: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
2: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today visited

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: One vacancy is available in the IDA pay scale of 60,000 to 1,80,000 rupees, equivalent to level 10 as per the 7 CPC. Eligible officers from major port authorities, central and state governments, public sector undertakings and autonomous bodies may apply in accordance with the prescribed recruitment rules. Candidates can find the detailed notification, eligibility criteria and application procedure on the official website of Cochin Port Authority. Kindly refer to the website, that is at www.cochinport.gov.in. I repeat, it is www.cochinport.gov.in. The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, LBSNAA, Mussoorie, under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, has invited applications from eligible candidates for recruitment to various posts on deputation basis. The vacancies include Administrative Officer, Data Entry Operator, Grade C and Grade B, Physical Training Instructor, Radiographer, Offset Machine Man, Staff Car Driver Grade 1 and Halwai cum Cook, with pay levels ranging from Level 3 to Level 7 as per the 7 CPC. Applications must be submitted through proper channel along with the prescribed biodata, RPARS, Vigilance Clearance, Integrity Certificate and other required documents within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed vacancy-wise eligibility conditions, application format and other instructions are available on the official website. Do refer to www.lbsnaa.gov.in. I repeat, it is www.lbsnaa.gov.in. The Noida Special Economic Zone, NSEZ, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited applications from willing and eligible candidates for appointment to several posts on deputation basis in the Office of Development Commissioner, Noida Special Economic Zone. The vacancies include Junior Hindi Translator, Assistant Development Commissioner, Section Officer Accounts, Stenographer Grade 3 and Preventive Officer, with pay levels ranging from Level 4 to Level 7 as per the 7 CPC. The posts are located in Noida and Moradabad in Uttar Pradesh. The last date for receipt of applications has been extended by 45 days from the date of publication of the extension notice in Employment News, while all other eligibility conditions remain unchanged. Detailed information regarding eligibility, application procedures and recruitment rules is available on the official NSEZ website. Do refer to www.nsez.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार. नमस्कार. रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. सहायक परिचालन अधिकारी, डिस्पैच अधिकारी और स्टोर कीपर. वेतनमान, आयु सीमा, योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट igrua.gov.in. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in. इसके अतिरिक्त भर्ती पोर्टल पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसका पता है www.recruitmentsvpuat.in. इसी संस्थान के विस्तार निदेशालय में निदेशक विस्तार और संयुक्त निदेशक का भी एक एक पद रिक्त है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता निर्देश और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए वेबसाइट www.svpuat.edu.in। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 3 अगस्त 2026। भारत सरकार का उपक्रम FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है। उपलब्ध पद हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ, मध्य स्तरीय विशेषज्ञ और विशेषज्ञ। ये सभी विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक अथवा भू भौतिकी विद अथवा रसायन वर्ग के विशेषज्ञ होने चाहिए, जबकि मध्य स्तरीय विशेषज्ञ संपर्क वर्ग के होने चाहिए। वरिष्ठ विशेषज्ञ मध्य स्तरीय और केवल विशेषज्ञ के 10-10 पद रिक्त हैं, जबकि मध्य स्तरीय विशेषज्ञ का एक पद रिक्त है। विस्तृत विज्ञापन और अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.fagmil.nic.in। मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, आवेदन प्रारूप, भर्ती के नियम और शर्तों तथा आवेदन शुल्क आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए IHBAS की वेबसाइट www.ihbas.delhi.gov.in। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 जुलाई 2026। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक मुंबई में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.nabfid.org। इसके अतिरिक्त 18 से 24 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच भी बाहर रह जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का ये विचार हमें सिखाता है कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछना, नई बातें स्वीकार करना और अपनी भूलों से सीखना आवश्यक है। श्रोताओं, यही दृष्टिकोण हमें जीवन में अधिक समझदार और संवेदनशील बनाता है। इसी सोच के साथ आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। अगले आधे घंटे में हम लेकर आएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरें, क्षेत्रीय गतिविधियों और खेल जगत की अहम हलचलें। वहीं डेडलाइन में होगी एक ऐसी रोचक और विशेष विषय पर चर्चा जो आपकी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए भी प्रेरित करेगा। साथ ही याद करेंगे उन महान विभूतियों को जिनका आज की तारीख से एक खास संबंध रहा है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून वैष्णवी।

0: to date. Registering its best ever performance this year, India has showcased its undeniable chemistry with the field of science, setting a benchmark for future teams to come. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
1: अब बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की। लिथुआनिया में आयोजित 37वीं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए हैं। सच में अनुजा, ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण रहा होगा उसमें।
2: एब्सोल्युटली वैष्णवी, द मेडल विनर्स वर भाव्या गुणवाल हु वन द गोल्ड मेडल, वाइल सोमिल मेथी, निशित कलानी एंड अनमोल कुमार बैग्ड सिल्वर मेडल्स। अ प्राउड मोमेंट इंडीड फॉर ऑल ऑफ अस एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज नॉट बिहाइंड इन कंग्रेचुलेटिंग द टीम ऑन देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस।
1: और श्रोताओं, भी कहानी खत्म नहीं हुई है। भारत की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स टीम ने भी कमाल कर दिया। जी हाँ, कोलंबिया के बुकरामांगा में आयोजित 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के सभी 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीते। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा।
2: And that's simply outstanding. 3 major international science olympiads and India has delivered one of its finest performances ever.

0: अनुजा, आपने गौर किया होगा ओलंपियाड शब्द सुनते ही कई छात्र सोचते हैं कि ये सिर्फ बेहद होशियार या जीनियस छात्रों के लिए होता है।
1: दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। ओलंपियाड्स आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स हु एंजॉय एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द स्कूल सिलेबस एंड लव सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स।
0: बिल्कुल, ओलंपियाड में हिस्सा लेने से सिर्फ पदक जीतने का मौका नहीं मिलता बल्कि नई तरह से सोचना, मुश्किल सवालों का हल ढूंढना और अपने विषय को गहराई से समझना भी सीखने को मिलता है और यही बातें आगे पढ़ाई और करियर दोनों में बहुत काम आती है।
1: एंड वैष्णवी, लेट्स नॉट फॉरगेट द इंटरनेशनल एक्सपोजर। स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दे एक्सचेंज आइडियाज, एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज।
0: शायद आप ये जानते हो या नहीं, लेकिन ओलंपियाड में मिली उपलब्धियां आगे चलकर बहुत काम आती हैं। ये आपके कॉलेज एप्लीकेशन को मजबूत बनाती है, स्कॉलरशिप और रिसर्च के नए मौके खोलती है और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी देती है।
1: एंड नाउ मेनी लिसनर्स माइट बी वंडरिंग हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन दीज ओलंपियाड्स।
0: अनुजा, की शुरुआत यहीं भारत से होती है। सबसे पहले छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस जैसे विषयों के इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर यानी IOQ में भाग लेना होता है।
1: एंड स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई मूव थ्रू सेवरल स्टेजेस इंक्लूडिंग ओरिएंटेशन कैंप्स एंड रिगरस ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स। द वेरी बेस्ट आर देन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल ओलंपियाड्स।
0: भारत में ओलंपियाड का पूरा सफर चयन से लेकर ट्रेनिंग तक होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी HBCSE के जरिए होता है।
1: एंड द की इज सिंपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टे क्यूरियस, प्रैक्टिस चैलेंजिंग क्वेश्चंस रेगुलरली एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क व्हाई एंड हाउ।
0: बिल्कुल, याद रखिए हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज जो छात्र दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वे भी कभी आपकी ही तरह स्कूल में पढ़ते थे और बड़े सपने देखते थे।
1: वेरी मच वैष्णवी, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द यंग साइंटिस्ट्स हु हैव मेड इंडिया प्राउड। देयर सक्सेस रिमाइंड्स अस दैट टैलेंट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ट्रूली नो नो बाउंड्रीज।
0: और अंत में हम हमारे सभी छात्र श्रोताओं से यही बस कहना चाहेंगे कि सपने बड़े देखिए, जिज्ञासु बने रहिए और सीखना कभी मत छोड़िए। आखिर कौन जानता है, भारत के लिए अगला ओलंपियाड मेडल आपका ही हो, इसलिए हमेशा सीखते रहिए। और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
1: एंड ऑफ कोर्स इन दिस सेगमेंट फर्स्ट वी टेक यू to Leh, where the first pilot geothermal power project of India is being developed at Puga Valley of Changthang district of Ladakh. Two wells of the geothermal project were commissioned by Lieutenant Governor of Ladakh, V.K. Saxena, on 17th of July. And with the commission of these two wells, which are significant, the 1 megawatt pilot geothermal power project is ready to harness power. Our Leh correspondent has filed this report on this.
2: Oil and Natural Gas Corporation is working at Puga Valley of Ladakh to develop India's first demonstration scale of the geothermal power project. The successful commissioning of the 1,000 meters deep well, which had drilled at 14,000 feet, has paved the way in achieving in harnessing of clean energy mission and vision of Ladakh as carbon neutrality in the country. Successful drill of these two wells are considered as unique due to the most challenging terrain in the world. Managing Director of ONGC Ashish Agarwal explained more about Puga Geothermal Power Project.
3: एक सिर्फ geothermal well नहीं हुआ है, ये देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, ये एक नेशन बिल्डिंग का काम हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि इंडिया में geothermal एनर्जी को हार्नेस किया जाए। आने वाले दिनों में ये जो पोटेंशियल अब इस्टेब्लिश होगी, अब हम पायलट फेज करेंगे और उसके बाद इसका कमर्शलाइजेशन फेज में जाएंगे, ना सिर्फ पावर जनरेशन के लिए बट लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये बहुत काम में आएगा।
2: एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैड टू फेस सेवरल चैलेंजेस लाइक एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सपायरेशन ऑफ 5 years ऑफ MOU इन फरवरी 2026। यंगचन डोरमा फॉर परिक्रमा फ्रॉम लेलता।
0: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अब तकनीक के नए दौर में कदम रख रही है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अब AI आधारित पैदल नेविगेशन और क्राउड इंटेलिजेंस ऐप की मदद से मंदिर और अन्य गंतव्यों तक आसानी से पहुंचने का मार्गदर्शन मिलेगा। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: वाराणसी नगर निगम और वाराणसी स्मार्ट सिटी ने निजी कंपनी के सहयोग से सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काशी में क्राउड मैनेजमेंट और पर्यटकों को गाइड करने की पहल की है। इसके जरिए काशी में क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे 4 घंटे पहले ही अनुमानित भीड़ का पता चल जाएगा और पुलिस समय रहते ही इस भीड़ से बचने के उपाय और डायवर्जन कर सकेगी। शुरुआत में शहर में 8 AI सेंसर लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में करीब 50 से अधिक हो जाएंगे। इससे भीड़ और ट्रैफिक बिहेवियर का अध्ययन करके पता चल जाएगा कि किस जगह पर आने वाले समय में कितनी भीड़ होगी और मौजूदा समय में कहां पर भीड़ और यातायात का दबाव है। ये जानकारी काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मिलती रहेगी, जिससे प्रशासनिक और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। वहीं सड़कों पर विभिन्न गंतव्य तक जाने के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पीले रंग की लाइन पर चलकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और नीले रंग की लाइन पर चलकर कोई भी श्रद्धालु गंगा के घाट पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही AI आधारित ऐप और म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से भी आने जाने के रास्तों को नेविगेट किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिक्रमा के लिए तनवीर फातिमा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: And of course, Vaishnavi, monsoon season is here and it has been raining throughout in most of the regions in our country. And the Char Dham Yatra in Uttarakhand resumed today after a day-long suspension. The pilgrimage had been temporarily halted yesterday as a precaution due to continuous rainfall and the risk of landslides along the pilgrimage routes. Our correspondent has more on this.
5: The Char Dham Yatra is being conducted in coordination with the district administration, police, SDRF and other concerned departments. Pilgrimage routes are under constant surveillance with heightened vigilance being maintained in vulnerable areas. Garhwal Commissioner Anand Swaroop has appealed to the pilgrims that if a route is temporarily blocked due to heavy rainfall, landslides or any reason, they should stay only at the safe locations or holding areas designated by the administration and to follow the instructions issued by the administration and police. The commissioner has also urged pilgrims to check the latest weather updates before commencing their journey and to rely only on official information issued by the administration. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: और श्रोताओं, चार धाम की यात्रा से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पवित्र शहर तारकेश्वर में सालाना श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
6: Every year in the rainy month of Shravan, that is in July and August, lakhs of people walk the path of devotion to Tarakeshwar Temple in Hooghly district of West Bengal. They carry holy water from the Ganges, collected mainly at the Nimai Tirtha Ghat in Boidobati, along with various other ghats, to offer to Lord Shiva at the Taruknath Temple. Known as the Shravani Mela, this event draws countless devotees.

0: Each year, pilgrims, referred to as Jaljatris, walk around 40 kilometers barefoot. They come from places all across the country. Echoes of chants, prayers and heartfelt devotion fill the town. Tarokeshwar Shravani Mela is more than a walk. It is a journey of love, belief and hope. This year, the opening day was marked by a spectacular aerial tribute, rose petals showered from a helicopter onto the temple and thousands of devotees below. Across Bengal, districts like Purva Bardhaman, Bankura and Kolkata are hosting vibrant local celebrations with community-run food stalls, fairs and temple gatherings. Even in far-off Kuchbihar and Jalpaiguri, devotees observe the month with local meal and Kanwar procession. Gajan celebration is performed by the devotees, signifying marriages of the male forces of Siva, Neel or Dharmaraj with their respective consorts. Sandipan Dashgupta, Akashvani, Kolkata.
1: Vaishnavi, let's take you to Goa now, where the Goa government has stepped up its efforts to strengthen the dairy sector by enhancing incentives, expanding financial support and recognizing the contribution of dairy farmers there. Let's find out more details from our correspondent.
2: Across Goa, dairy farming is a vital source of livelihood for thousands of families. Nearly 4,500 dairy farmers supply around 125,000 liters of milk every day, helping meet the state's growing demand. To support them, the government has enhanced milk procurement incentives to 6 rupees per liter for cow's milk and 10 rupees per liter for buffalo's milk. Under the expanded Mukhya Mantri Sudharit Kamdhenu Yojana, financial assistance is now available for dairy units with up to 20 cows. The government also honored outstanding dairy farmers with Gopal Ratna Award, inspiring more youth to take up dairy farming. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
3: भारत भूटान चीन त्री जंक्शन से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि भी जारी कर दी गई है। मॉनसून समाप्त होते ही रेल मंत्रालय और पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कार्य शुरू करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को और मजबूत व अभेद्य बनाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब भारत भूटान चीन सीमा के त्रिजंक्शन जल ढाका को रेल लिंक से जोड़ा जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 272 करोड़ रूपए की राशि विगत दिनों आवंटित की है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के समतल पहाड़ के कालिम्पोंग जिले के वन क्षेत्रों से होते हुए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इस रेल लाइन को बिछाने के लिए सर्वे का काम बरसात समाप्त होते ही शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के भारत भूटान चीन से लगे सीमा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। भारतीय सेना के लिए सैन्य परिचालन को भी बल मिलेगा तथा कालिम्पोंग व जलपाई गुड़ी जिलों के पहाड़ी व तराई क्षेत्रों में जल ढाका बिंदु व तोदे तांगदे इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह रेल लाइन जलपाईगुड़ी के चालसा से खुनिया मोड़ से शुरू होगा तथा जल ढाका तक विकसित किया जाएगा। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
1: And now something from the field of sports. In China Open Badminton, India's HS Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10-21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And if we talk about the business news, benchmark domestic equity indices ended in negative zone today. The Sensex declined 238 points or 0.3% to close at 77,470. The Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. However, in the broader market on the National Stock Exchange, Mid Cap 100 Index rose 0.3% and Small Cap 100 Index added over 0.5%.
3: आइए अब रुक करते हैं 21 जुलाई से जुड़े उन महान लोगों की ओर जिन्होंने अपने विचारों, प्रतिभा और कर्मों से समाज और देश पर अमिट छाप छोड़ी।
1: एंड वी स्टार्ट विद पेइंग ट्रिब्यूट टू उमेश चंद्र बनर्जी, मीनिंग He was an honoring, a pioneering Indian barrister, a brilliant legal mind and a foundational architect of India's freedom struggle. He's best remembered as the co-founder and the first president of the Indian National Congress. It is his death anniversary today. His leadership united early political voices in the

0: आवाज बनी थी। आइए आपको सुनाते हैं गंगूबाई की कुछ खूबसूरत नगमे। लेकिन उससे पहले अगर अनुजा और कुछ बताना चाहेंगे, अब हमारे पास और कौन से आगे बढ़े?
1: नहीं, बिल्कुल, वी हैव अ सॉन्ग इन हर वॉइस, लेट्स।

0: Heartfelt tributes on the birth anniversary of Vitthal Sakharam Phage, a distinguished freedom fighter and visionary leader, on his death anniversary, whose unwavering commitment to democracy and public service strengthened Maharashtra's legislative traditions. His legacy of integrity, leadership and dedication to the nation continues to inspire generations. May his ideals of service, patriotism and democratic values continue to guide us towards a stronger and more united India.
1: कुछ अभिनेता किरदार निभाते हैं और कुछ अपने अभिनय से उन किरदारों को अमर कर देते हैं। शिवाजी गणेशन ऐसे ही महान कलाकार थे जिन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। लगभग 5 दशकों के अपने शानदार फिल्मी सफर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वीर पांड्या, कट्टा बोमन, पासाम लार और देव मगन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी मिसाल माना जाता है। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की आवाज में ये दमदार संवाद।
2: என்னை குற்றவாளி என்கிறார்களே, இந்த குற்றவாளியின் வாழ்க்கை பாதையிலே கொஞ்ச தூரம் பின்னோக்கி நடந்து பார்த்தால் அவன் கடந்து வந்துள்ள காட்டார்கள் எவ்வளவு என்று கணக்கு பார்க்க முடியும். பாட்டொலிக்கும் குயில்கள் இல்லை என் பாதையில், படமெடுக்கும் பாம்புகள் நெளிந்திருக்கின்றன.
0: This was a dialogue from his Tamil movie Parashakti. He was introduced to cinema in the year 1952 through this movie, which became a blockbuster later.
1: कुछ कलाकार लोकप्रियता से नहीं बल्कि अपनी कला की ऊंचाइयों से पहचाने जाते हैं। सज्जाद हुसैन ऐसे ही असाधारण संगीतकार थे जिनकी धुनों की जटिलता, मौलिकता और शास्त्रीय गहराई से उन्हें इस हिंदी फिल्म संगीत का एक अलग ही अध्याय बना दिया। सज्जाद हुसैन की रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: यह सज्जाद वेंट ऑन टू वर्क विद मेनी नोटेबल सिंगर्स इंक्लूडिंग सुरैया, लता मंगेशकर, आशा भोसले एंड ही वॉज रिगार्डेड हाईली बाई हिज कंटेम्प्रेरीज इंक्लूडिंग अनिल बिस्वास एट दैट टाइम। वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स दैट सज्जाद हुसैन क्रिएटेड वॉज इन द फिल्म रुस्तम सोहराब, इन विच सुरैया सैंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

0: ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत आप सभी का गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, लेकर सवाल जवाब का पिटारा, यानी कि सवाल मेरे पास है और जवाब आप मुझे देंगे, तो मिलकर ये बन गया पिटारा। फिलहाल सुनते हैं हिम्मत वाला से ये बहुत ही मज़ेदार गाना, और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको हमारे पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखकर भेजने हैं। वैसे अगर आप हमारे पुराने लिसनर हैं तो आप जानते हैं कि ईमेल के जरिए आप हमें फिल्म के नाम लिखकर भेजेंगे, जिनसे जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी आज यहाँ पर। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये सफ़र, तो रहिए हमारे साथ।

आज आपको गेस करनी है यश चोपड़ा की एक रोमांटिक फिल्म जो 80s के एंड में आई। जी हाँ, यश चोपड़ा के लिए 80 का दशक कुछ खास नहीं रहा। जब उनकी एक्शन फिल्म्स ने जो है फ्लॉप होती चली गईं, तो उन्होंने फिर से एक बार रोमांटिक फिल्मों की ओर रुख कर लिया। जैसा कि हम सब उन्हें जानते भी हैं, जैसे ही यश चोपड़ा का नाम आता है तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सिलसिला, लम्हे, दिल तो पागल है या मोहब्बतें याद ना आए। वैसे जिस फिल्म का जिक्र आज मैं कर रही हूं, उसकी म्यूजिक एल्बम यानी कि आप कह सकते हैं कि उसका म्यूजिक, उसका संगीत इतना पसंद किया गया कि इस फिल्म के गाने आज भी सुपरहिट हैं। इस फिल्म में 9 गाने हैं और 2 इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स भी हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। ये आप तब जान जाएंगे जब आप फिल्म का नाम पहचान लेंगे। तो अगर आप पहुंच चुके हैं फिल्म के नाम तक, तो आपको लिख भेजना है अपना जवाब fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, यहाँ सब्जेक्ट कॉलम में आप फिल्म का नाम लिखकर इसे जल्दी से सेंड कर दें। तब तक हम सुन रहे हैं शक्ति फिल्म से ये गाना।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

बिल्कुल, आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं और ये सफर भी गाते गुनगुनाते चल रहा है, पता चलता है आपकी ईमेल से। और पहला सही जवाब जो हम तक पहुंचता है उसे लिखकर भेजा है नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर नई दिल्ली से। दूसरा सही जवाब आता है नागेंद्र ठक्कर का। और तीसरा जवाब देने वाले हैं अजिंक्य, गिरीश बम, वैशाली बम, जीत और रिया। तो आप सभी हैं बहुत बहुत बधाई के हकदार और पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आप सबका नाम आता है। इसके बाद भी सही जवाब आए हैं। इदरीस सैफी ने दिया हमें सही जवाब और सही जवाब देने वाले हैं गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, प्रफुल्ल मोहद प्रफुल्ल जो हैं अमरावती से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। मिलिंद खड़के भी हैं हमारे साथ सही जवाब देने वाले। ललित कुमार ने लिखा सही उत्तर और संतोष सक्सेना बताते हैं, जगदीश बजाज, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से सही जवाब देते हैं, प्रणव शिंदे, राजेश मानक लाल शाह, सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी और मधु किरण, प्रकाश गोगिया, प्रवीण कुमार दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। डीबी राणा है नेहरू विहार से, मोहम्मद सईद अबासी, निकत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, आपने भी बिल्कुल सही सही बताया, अजीत भावसर,

आपने भी दिया सही जवाब। वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप में से, जिन लोगों ने सही जवाब नहीं दिए, किसी ने लिखा मोहब्बतें, किसी ने सिलसिला, दिल तो पागल है, अरे ये नाम तो मैंने लिए भी थे, जिस फिल्म की मैं बात कर रही थी वो नाम मैंने शामिल नहीं किया था। तो आप लोग हिंट्स थोड़ा और ध्यान से सुने, मैंने कहा यश चोपड़ा इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो अब जिनके नाम मैंने ले दिए उनके बारे में तो मैं जिक्र नहीं करूँगी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। कोई बात नहीं, अगला सवाल आपके लिए रेडी है और उस सवाल के बाद चांदनी का गाना भी आप तक पहुंचेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि चांदनी जो फिल्म है ये 1989 में रिलीज हुई और इसमें एक्टिंग की श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और वहीदा रहमान ने। अगला सवाल आप सबके लिए है 80s की ही एक क्राइम थ्रिलर फिल्म से, जिसे डायरेक्ट किया महेश भट्ट साहब ने। फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक भी फिल्म में लाजवाब रहा। यह कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम है रवि और विकी। रवि और विकी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रवि हमेशा विकी की मदद करने के लिए आगे आता रहता है और विकी नई नई मुसीबतों से दो चार होता रहता है। खूबसूरत गानों से सजी इस फिल्म का नाम अगर आप पहचान चुके हैं तो इसे जल्दी से लिख भेजें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में आएं तो आपको थोड़ी और जल्दी स्पीड पकड़नी होगी, और अगर सब्जेक्ट कॉलम में आप फिल्म का नाम लिखकर सेंड कर देंगे तो सबसे पहले आपका नाम पहुंच सकता है, अगर टाइम रहते आप सेंड करते हैं तो। तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ चांदनी फिल्म से ये बहुत ही प्यारा गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का गाते गुनगुनाते में। और आपके जवाब जो हैं वो हमें मिल गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 90 से ऊपर परसेंट जो हैं वो सही जवाब आए हैं, मतलब 90% से ज़्यादा सही जवाब आप लोगों ने लिखकर भेजे हैं। तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ नामों के साथ, फिर बताएंगे आपको कि क्या है फिल्म का नाम। वैसे मैं पहले ही बता देती हूँ, फिल्म का नाम है नाम जी, नाम है वो फिल्म जिसकी मैंने बात की। तो पहला सही जवाब आया नवीन भाटिया साहब का मोतीनगर से, दूसरा जवाब देने वाले पंकज कुमार, और तीसरे नंबर पर आते हैं नागेंद्र ठक्कर। आप सभी को बधाई। इसके बाद प्रणव शिंदे, इदरिस सैफी, भगवती सिंह, प्रफुल मोहद, प्रफुल ललित कुमार, अजीत भावसर, विरमगाम गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ सही जवाब देते हैं, और संतोष सक्सेना, सतप्रकाश सनौठिया रोहिणी से बताते हैं सही जवाब, जगदीश बजाज विकासपुरी से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान, अतुल अग्रवाल गाजियाबाद से, सुदर्शन, सिमरन, अनीता मुखी सोनीपत से, गिरीश वैशाली, अजिंक्य अजीत और रिया वडोदरा से सही जवाब बताते हैं, जितेंद्र चौरसिया हैं सही जवाब देने वाले, भगवती सिंह ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, मधु किरण, प्रकाश गोगिया, प्रवीण कुमार हैं दिल्ली से, और वीरेंद्र शर्मा का भी हमें ईमेल आई

है, लेकिन आपने फिल्म का नाम नहीं लिखा, मुझे लगता है आप भूल गए हैं, आपने सिर्फ मुंबई लिखकर भेज दिया है। और इसके बाद सही जवाब देते हैं जयंती नाशिकार, आप हमें जवाब लिखकर भेजते हैं। और राजकोट से जैमिन कुमार जैन, आप सभी ने बिल्कुल सही सही बताया कि फिल्म है नाम जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया, संजय दत्त, नूतन कुमार गौरव, अमृता सिंह, परेश रावल, पूनम ढिल्लो, इन सब ने इस फिल्म में जो है काम किया। और दो भाइयों की जो भूमिका है वो निभाई किसने, कुमार गौरव और संजय दत्त ने। कुमार गौरव बने रवि कपूर और संजय दत्त बने विक्की कपूर, और पूनम ढिल्लो ने सीमा राय का किरदार निभाया, और फिल्म में नूतन बनी रवि और विक्की की माँ। तो ये तो हुई नाम फिल्म की बात, इससे बहुत ही एक खूबसूरत गाना मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जरूर पूछूंगी आपसे। अगला जो आपके लिए मैं पहेली, आप कह सकते हैं रिडल लेकर आई हूं, वो एक मल्टी स्टारर फिल्म से है जो 80s की शुरुआत में रिलीज हुई। राज एन सिप्पी ने फिल्म डायरेक्ट की और फिल्म को प्रोड्यूस किया रोमू एन सिप्पी ने। ये कहानी है भाइयों की जो एक फार्म हाउस पर रहते हैं, जिन्हें सुधारने के लिए आती है इंदु जो बड़े भाई की पत्नी है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और हंसी खुशी से चल रही भाइयों की जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जब फिल्म की स्टोरी घूमती हुई नजर आती है। अगर आपने पहचान लिया है फिल्म का नाम तो इसे जल्दी से टाइप करके भेजना है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

0: गीतकार आनंद बख्शी का ये गीत। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे गाते गुनगुनाते में, आप जिसे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

बिल्कुल, और जानते हैं कि किसने सही जवाब लिखकर भेजा है। पहला सही जवाब देने वालों में नाम शामिल मैं कर लेती हूं जी। तो पहला सही जवाब आया है हमारे पास नवीन भाटिया साहब का मोतीनगर से। एक बार फिर अमित नरूला हैं दूसरे नंबर पर और नागेंद्र ठक्कर हैं तीसरे नंबर पर। तो जो देखने में आ रहा है वो नवीन भाटिया और नागेंद्र ठक्कर जो हैं पहले दूसरे तीसरे में रहते हैं, बस ऊपर नीचे कभी कभी नाम हो जाता है। ललित कुमार भी सही बताते हैं। इदरीस सैफी का भी जवाब नहीं, इदरीस सैफी का जवाब सही नहीं है। अतुल अग्रवाल गाजियाबाद से सही सही बताते हैं। जुगेश रावत हैं, प्रणव शिंडे, गिरीश बम, वैशाली अजंक्य बम भी हैं इनके साथ, और रिया जीत भी हैं वडोदरा से आपके साथ। राजेश मानकलाल शाह ने बिल्कुल सही बताया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान, अरजान, अबान बताते हैं सही सही। कौशल नोएडा से सही आंसर लिखकर भेजते हैं। प्रफुल्ल का भी जवाब सही है। जगदीश बजाज विकासपुरी से सही उत्तर लिखकर भेजते हैं। और राजेश मानकलाल शाह ने शायद दोबारा मैसेज भेज दिया। आराधना शर्मा, राज शर्मा बिल्कुल सही बताते हैं। अजीत भावसर विरमगाम गुजरात से प्रमिला भावसर के साथ देते हैं सही जवाब। डीबी राणा नेहरू विहार से, देवेंद्र लोडिया, संतोष सक्सेना आपका जवाब सही नहीं है। ऋत्विक हैं, जयंती नाशिकार हैं, वीरेंद्र शर्मा और प्रभात ए एच देवाली, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी, आप सबने बिल्कुल सही सही बताया। और आपको इसी फिल्म से यानी कि सत्ते पे सत्ता, ये है फिल्म का नाम जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और थोड़ा और हिंट मैं देती तो शायद सब पहचान जाते। और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब लिखकर भेजा। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेंटल, कंवलजीत सिंह और विक्रम साहू ने इस फिल्म में एक्टिंग की। बहुत ही मज़ेदार ये फिल्म रही और मज़ेदार एक से बढ़कर एक इस फिल्म के गाने रहे। तो एक गाना जो मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा और सबका फेवरेट भी है, वो मैं आपको सुनवा रही हूँ।

आप लोगों के साथ ये सफर हमेशा बहुत खास होता है। छोड़े जा रही हूं आपको एक और बहुत ही सुंदर गीत के साथ, जो है अर्थ फिल्म से। फिर किसी रोज आपसे यहीं मिलना होगा, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak on the second consecutive day. The Lok Sabha and the Raj Sabha each witnessed three adjournments due to opposition's uproar. When both the houses reassembled at 2 p.m. after the second adjournment, opposition members resumed their protests over the NEET issue. Amid the continued uproar, the chairs adjourned both Lok Sabha and the Raj Sabha for the day. Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi stressed that those responsible should face the strictest possible punishment.
2: Paper leak ka khabar aaye, turant sarkar ne karwai kiya.
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: Dobara is tarah ka paper leak na ho, iske liye sakti se kadam utha gaya hai.
0: Union Health Minister J.P. Nadda today visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi and held a meeting with the doctors at the hospital. He also reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged exam paper leak of NEET UG 2026. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who were admitted there. The Delhi High Court has ordered immediate shifting of activist Sonam Wangchuk from Safdarjung Hospital in the national capital to Medanta Hospital in Gurugram. The court passed the order while hearing a plea filed by Wangchuk's wife Gitanjali Angmo. So National Hydroelectric Power Corporation Limited, NHPC, has said that a detailed investigation will be undertaken to ascertain the cause of the tunnel collapse at the NHPC T-Star Stage 6 hydroelectric project at Samardang in Namche district in Sikkim yesterday. In a statement, NHPC informed that 11 casualties have been reported so far and several others are trapped inside the tunnel. The rescue operation is underway. Prime Minister Narendra Modi spoke to Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole and assured all assistance. President and Vice President have expressed grief over the loss of lives in Sikkim. India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors including information technology, agriculture, food processing, pharmaceuticals, textiles, biotechnology, tourism, hospitality and filmmaking. Addressing the media in Skopje, after talks with her North Macedonian counterpart, President Draupadi Murmu said both countries have reaffirmed the deep and friendly ties based on shared democratic values and mutual respect. President Murmu expressed confidence that her landmark visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, will further strengthen the multifaceted partnership between the two countries. From North Macedonia, she will travel to Romania after concluding her visit. The Madhya Pradesh Assembly passed the Uniform Civil Code Bill on the second day of its monsoon session today amid protests by the opposition. The bill will now be sent to the governor for assent. Once approved, the Uniform Civil Code will come into force in the state. Tribal communities have been kept outside the purview of the law. India today summoned the Russian Charge d'Affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on Sunday. The Ministry of External Affairs said that such attacks undermine the safety, security and stability of the international maritime commerce. In China Open Badminton, India's HS Pranoy's campaign ended in the opening round after losing to Malaysia's Leong Jun Hao in Guangzhou today. Lakshya Sen and Ayush Shetty are the other Indian entries in the men's singles draw. Devika Sehwag lost to Thai player Busanan Ongbam Rungnaphan in the women's singles draw. The benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex declined 238 points to close at 77,470. The Nifty lost 51 points to settle at 24,188. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है सफेद सोना, भारत की कपास की कहानी। हम सभी अपने दैनिक जीवन में सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेत में उगने वाला कपास का छोटा सा रेशा किस तरह किसानों के खेतों से निकलकर कपड़ा मिलों, उद्योगों और फिर दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचता है। कपास केवल एक फसल नहीं है, ये भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार और करोड़ों लोगों की आजीविका को जोड़ने वाला एक मजबूत धागा है। यही कारण है कि इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। भारत की एक विशेष पहचान ये भी है कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां कपास की चारों मान्यता प्राप्त किस्मों की खेती की जाती है। वर्ष 2025-26 के अनंतिम अनुमान के अनुसार देश में 290,91,000 गांठ कपास का उत्पादन हुआ, जबकि घरेलू खपत 328,00,000 गांठ रही। सरकार अब उत्पादकता, गुणवत्ता, बाजार तक पहुंच और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, डिजिटल खरीद और पता लगाने की क्षमता संबंधी पहल प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर रही है। इन प्रयासों से उत्पादकता बढ़ रही है, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और वैश्विक कपास अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। कपास की खेती को लाभ का क्षेत्र बनाने की दिशा में सरकार की रणनीति पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये बात सुनिए।
2: कपास की उत्पादकता बढ़ाना है, कपास के किसानों का कल्याण करना है, कपास के उत्पादन की लागत घटाना है, कपास में लाल सुंडी जैसे लगने वाले रोगों का मुकाबला कैसे करें इस पर विचार करना है, कपास के उन्नत बीज कैसे बने, रेनफेड एरिया में कपास की खेती कैसे बेहतर हो, कपास के बीज सुलभता से कैसे किसानों को मिले और कपास में अटैक करने वाले वायरस का मुकाबला हम कैसे कर पाए, और काटन पैदा करने वाले किसान बहनों और भाइयों, हम काटन की खेती को उन्नत बनाएंगे, आपके लिए फायदे का धंधा बनाएंगे।
1: अब जानते हैं कि भारत के लिए कपास इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
3: भारत और कपास का रिश्ता हजारों वर्षों पुराना है। एक समय ऐसा था जब भारतीय सूती वस्त्र दुनिया के कई देशों में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। 19वीं शताब्दी में कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की स्थापना के साथ आधुनिक सूती उद्योग ने नई गति पकड़ी। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। बाद में स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय कपड़ा उद्योग को और मजबूत किया और देश में स्वदेशी मिलों की स्थापना को बढ़ावा मिला। आज कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल

0: फसलों में से एक है। ये लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका का आधार है। इसके अलावा कपास की प्रोसेसिंग, व्यापार और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से 40 से 50 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता है। कपास, सूत, कपड़ा और तैयार परिधानों का निर्यात भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें एशियाई कपास, मिस्र की कपास और अमरीकी अपलैंड कपास शामिल है। वर्ष 2002 में व्यावसायिक रूप से शुरू की गई बीटी कपास में बॉल वर्म नामक प्रमुख कीट के प्रकोप को काफी हद तक कम किया गया। इससे कीटनाशकों के उपयोग में कमी आई और किसानों की आय में भी सुधार हुआ। भारत में कपास की पहचान उसके रेशों यानी स्टेपल की लंबाई के आधार पर भी की जाती है। देश छोटे स्टेपल से लेकर अतिरिक्त लंबे स्टेपल तक सभी श्रेणियों की कपास का उत्पादन करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अगर खेती की बात करें तो देश में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होता है। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और दक्षिणी क्षेत्र में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा ओडिशा और तमिलनाडु में भी कपास की खेती की जाती है। भारत में 114.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती है, जो विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 38% है। हालांकि देश में लगभग 62% खेती वर्षा आधारित है, जबकि 38% खेती सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। यही व्यापक खेती, जैव विविधता और मजबूत वस्त्र उद्योग भारत को वैश्विक कपास अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: कपास की खेती जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पादन बढ़े और भारतीय कपास की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर और मजबूत हो। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, कपास उत्पादकता मिशन, डिजिटल खरीद व्यवस्था और कस्तूरी कॉटन भारत जैसी कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आइए जानते हैं इस बारे में हमारी अगली रिपोर्ट में।
2: भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इनका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, गुणवत्ता सुधारना, आधुनिक तकनीक अपनाना और भारतीय कपास को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना भी है। सबसे पहले बात न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की। MSP व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि यदि बाजार में कपास की कीमतें तय समर्थन मूल्य से नीचे चली जाएं, तो किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। अब तक 41 लाख से अधिक किसानों के पंजीकरण के साथ इस एप्लीकेशन ने MSP संचालन में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत किया है। कपास की खरीद की जिम्मेदारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI को दी गई है। कपास वर्ष 2025-26 में CCI ने अपने खरीद केंद्रों की संख्या 508 से बढ़ाकर 571 कर दी। ये केंद्र 11 कपास उत्पादक राज्यों के 152 जिलों में किसानों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 में मध्यम रेशे वाली कपास का MSP 7,710 रुपए प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास का 8,110 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। वहीं 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर क्रमशः 8,267 रुपए और 8,667 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी दोनों श्रेणियों में 557 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2025-26 में 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन भी शुरू किया है। लगभग 5,659.22 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले इस मिशन का उद्देश्य जलवायु अनुकूल, कीट प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली कपास की नई किस्मों का विकास करना है। इसमें अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास यानी ELS कपास पर विशेष जोर दिया गया है। ये मिशन कृषि से लेकर फाइबर, कारखाना, फैशन और विदेशी बाजार तक की पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 14 राज्यों के 140 जिलों में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और करीब 32 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कपास पर एक विशेष परियोजना भी चलाई जा रही है। इसमें उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, कम दूरी पर रोपण और अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की आधुनिक तकनीकों का खेतों में प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने खरीद व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कपास किसान मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और खरीद के लिए पहले से समय निर्धारित कर सकते हैं। अब तक 41

0: लाख से अधिक किसान इस ऐप पर पंजीकरण करा चुके हैं। इससे आधार आधारित भुगतान, SMS के माध्यम से जानकारी और पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में मदद मिली है। 30 जून 2026 तक 3,29,550 गाठों का प्रमाणन किया जा चुका है, जिनमें 3,22,400 गाठें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हैं। इस कार्यक्रम में QR कोड आधारित प्रमाणीकरण और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्पष्ट है कि कपास केवल एक कृषि फसल नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और निर्यात का महत्वपूर्ण आधार है। भारत की कपास की कहानी निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। एक ओर ये लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वस्त्र उद्योग और उससे जुड़े करोड़ों लोगों के रोजगार का भी आधार है। यदि आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता सुधार और मूल्य वर्धन पर इसी तरह ध्यान दिया जाता रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक कपास अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने। नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भावि परीक्षासु प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं निवारयितुं समन्वित प्रयासानां कृते आह्वानं विहितम्। नीट प्रश्नपत्र प्रकटन दोषिणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय प्रशासनस्य दृढ संकल्पः पुनरावर्तितः। विपक्षस्य विरोध कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अद्य स्थगितम्। सिक्किमस्य नामची मण्डले निर्माणाधीनस्य सुरंगस्य निपातेन 11 जनाः मृताः, बहवः सम्प्रति अन्तः निरुद्धाः सन्ति। आपतोद्धार कार्यं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारतोत्तर मैसोडेनिया देशौ व्यापार विस्ताराय तथा प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकर्तुं सहमतौ अभवताम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया स्कोप्ये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता। अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटनरोधाय रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है।

0: सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्त व्यापार सन्धिषु भारतीय कृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद भवनस्य प्रावृत्त सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरंतर कोलाहलेन आगामी दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः 11 वादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रश्नकालस्य संचालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षिसदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य संचालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्न 12 वादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना संध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं 2 वादनं यावत् बाधितम्। 2 वादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन संचालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण 6 जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धार कार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् 11 मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। संप्रति नामची मंडल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारिभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरं आपतोद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढं अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख

0: क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: अस्य मासस्य एकोनविंशे दिनांके MV गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातकाक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्य मंत्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन। अस्य भीषण प्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिक कार्य मन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखंड राज्य अश्रांतं जलवृष्टेः तथा यात्रा मार्गेषु संभाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधाम यात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मंडल प्रशासन आरक्षीय बलेन अथ अन्याधिकारी वर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारु रूपेण संचाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्या क्रीडिका PV सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डां सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. Most Asian stock market indices end in positive territory and global crude oil prices rise.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद, प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांक आज भी मंदी के दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 238 अंक गिरकर 77,470 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 51 अंक गिरकर 24,188 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबार की शुरुआत में ही निवेशक सतर्क बने रहे। पूरे सत्र में दोनों सूचकांक गिरावट के दायरे में ही कारोबार करते नजर आए। हालांकि ऐसी एनएससी मिड कैप सूचकांक में 0.3% और एनएससी स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 238 पॉइंट्स और 0.3% टू क्लोज एट 77,470। द निफ्टी लॉस्ट 51 पॉइंट्स और 0.2% टू सेटल एट 24,180। Earlier, markets opened on a flat note as investors remained cautious amid geopolitical uncertainties and elevated crude oil prices. Both the indices traded with a negative bias for most of the range-bound session today. However, in the broader market on the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 Index rose 0.3% and Small-Cap 100 Index added over 0.5%.
1: हालांकि सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज मजबूती दर्ज हुई। बढ़त वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 2%, इंडिगो 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% प्रमुख रहे। गिरावट वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक 2.1%, रिलायंस तथा स्टेट बैंक लगभग 1.5% और टीसीएस 1.3% के नुकसान से बंद हुए।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएससी 13 out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, PSU banks dropped 0.8%, focused IT as well as IT slipped almost 0.7%, and top 10 bank index lost over 0.5%. In contrast, mid-small private banks quality tilt jumped more than 2.9%, Realty rose 1.1%, and commodities added 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,188 advanced, 2,021 companies declined, and 190 remained unchanged. Vishal, the Indian stock market closed lower for the second consecutive session today. What were the reasons behind today's decline?
2: Well, largely, I would say that, you know, they're staying range-bound, both the Nifty and the Sensex as well. But yes, there is a marginal decline now. There's not much positive sentiment to go on. As I've been saying time and again, the markets do operate on sentiments, and those sentiments create momentums in the market, in the both negative and the positive, you know, category as well. But over the past, you know, 3-4 days, there has not been any huge sentiment which has been created. Although, and there is a, this one is a big although, because the foreign currency figures which have come in, those are really positive, and that impact is seen on the status of the Indian rupee as well. So that is there, and that is going to build the momentum in the, perhaps in the next few sessions. But nothing much more stronger to come by as of now. I think we should wait and watch, as the market looks like is waiting and watching for the results of the June quarter as well. They've started trickling in, so far so good, but nothing extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up, and that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp, and the overall sentiment in terms of, you know, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable sentiment which is there in the market, but the market is yet to try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter, that's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
1: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग बराबर से ही रहे। और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोजी। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। क्या बाजार को अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
2: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर,

0: क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिस पे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ही हम मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नज़र उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5,000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2,000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
0: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड़ आ सकता है उस पर एक नजर है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने जगह पर स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं, एमएसएमई सेक्टर है जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
0: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं 2-pronged स्ट्रेटजी कहूँगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक 2-pronged स्ट्रेटजी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नज़र जरूर है, और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएँ, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज़्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, बहुत जल्द से मेरा मतलब 3-6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज और संक्षेप में यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पर स्थिर हैं, और अब वो कहां मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके

0: सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलकर वो इस पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
1: देखिए, क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता
0: जी,
1: है
0: जी, जी.
1: क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा. और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा. और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे, उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा.
0: चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर. एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा. ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए. हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मजबूती का रुख रहा. लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए.
2: मेजर यूएस इंडिसेज एंडेड लोअर यस्टरडे. द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्लिप्ड 0.6%, S&P 500 डिप्ड 0.2% एंड द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स closed marginally down. Meanwhile, investors are looking for moves toward de-escalation in the West Asia conflict and are awaiting earnings reports from major companies due later in the week. Vishal, we'd like to have your expert comment on this in the backdrop of elevated crude oil prices and resumption of West Asia crisis.
1: Well, if we look at the overall situation, these two are very, very crucial impact factors. Now, we've seen the impact in the past, I would say, more than 4 months. And this has also shown to the world that, any crisis in the energy sector is bound to have ripple effects across various sectors as well. As far as the West Asia crisis is concerned, this is the immediate flare up, and this has a lot of impact because those are oil producing baskets of the world where this conflict is happening. But if we go back say 4 years, 3 years, 4 years, when the Russia-Ukraine conflict also started, the world did witness a sort of a shock as far as, the energy prices or energy sector is concerned. Not so much on the Asian side, but a little bit extra on the European side as well. And the sanctions against Russia and, the resulting process and phenomena, all that had a very profound impact. So that is why it is always going to be really, really important to understand that the world runs on energy specifically, and it is going to be really important for all players, including the ones which are at conflict right now, to try and figure a way out, because the longer this continues, much harder will it be for certain economies, not everyone, but for certain economies to tide over in situations and come back to the normal terms.
0: Vishal, agar pure taur pe dekhen Asia aur America aur apne gharelu bazaar ko, share bazaar ki agar hum baat kare, hamare bazaar mein kahin na kahin mote taur pe, chahe ankon ke taur pe, aankdon ke taur pe giravat nazar aayi Asiai bazaron mein, lekin wahi wo ek theek thak mazbooti nazar aa rahi hai. America bazaar mein bhi halka sa dabav nazar aata hai. Do cheezein swabhavik man mein jo aashankayein utpann hoti hain, kya jo Middle East एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्था ही मान चुकी है कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
1: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा. अगर आपको 2, 4, 5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे

0: तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सबने मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना और खासतौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है, तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते जरूर ढूंढे हैं और एक तरीका जरूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
1: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
0: Well, you know, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, you know, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, you know, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any, you know, unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There is always a meeting ground, and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some, you know, negative impact on the markets, specifically, you know, in US, in Canada, and in European markets as well. But it's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets and specifically us out here in India.
2: नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। इस कॉपीएम में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं, साथ ही आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि भारत और उत्तरी मकदूनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच भी प्रदान करेगा।
1: बैंक्स हैव मोबिलाइज्ड ओवर 20.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्पेशल स्वैप स्कीम टिल फ्राइडे लास्ट वीक। The scheme was operationalized on 8th of June. According to RBI's data issued yesterday, of the total deposits, banks received 17.4 billion US dollars through foreign currency non-resident FCNR bank deposits. Nearly 2 billion USD were raised through overseas foreign currency borrowings or OFCBs and over $1.3 USD through external commercial borrowings. RBI had announced this conceptual swap facility with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. The swap facility for FCNRB deposits will remain available until 30th of September 2026. Vishal, can this rise?

0: companies made their mark, have been earning a significant amount of money, to go ahead and park their money, or rather invest their money, within the country, that is India, with very, very significant options provided in the FCNRB. Because largely, if you look at FCNRB, it's more of a fixed deposit for the NRIs. Now, that's a very interesting aspect. It's like this, that say, for example, I'm settled in United States or some other country. I've earned, say, $1 lakh. That is my earning. Now, there are currency fluctuations as well. So what RBI says is, it gives me an option through this particular scheme that I can go ahead and invest or park my money in Indian banks for a specific tenure, maybe 1 year, maybe 2 years, and the maximum is 5 years. Now, what do I get out of it? One, my money will be parked in US dollars if I have earned it in US dollars. If I've earned it in, pound sterling, it'll be parked in pound sterling. So there is no change of currency. So basically, I then save money on exchange rates as well. That is one. Two, when I want to, get my money back, I'll get the principal and the interest as well to my overseas account. I can, get back the entire 100% of that money. There is no tax as well on this. That is one. There's one condition, though, which RBI has imposed. And that condition is really insignificant and important from both point of view. That is that you cannot withdraw before 1 year. There is a period, holding period, that is minimum is one year. Now, what do we get out of it? What do RBI gets out of it? We get foreign currency. Then there is a swap facility, which banks can utilize. The other banks can utilize. They can, park their dollars with the RBI, get rupee in that. So RBI is Reserve Bank of India gets a lot of maneuvering and elbow room as far as currency fluctuations are concerned. Our foreign currency target is achieved. The coffers are much more bigger, and as far as investors are concerned, it's a win-win situation for them, so that their money is safe in their country of their origin. That's one, and they can get it back as and when they want it without any tax.
1: All right, perfect. Global crude oil prices gained today. Brent crude was trading over 1.7% up at $90.76 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading nearly 1.7% up at $83.87 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% up at 1,43,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% up at 2,23,620 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.9% की बढ़त से 1,42,608 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 2.1% की मजबूती से 2,23,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. विशाल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी आपके हिसाब से, ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहाँ देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आम तौर पे ऐसे देखा था, डॉलर मजबूत होता है, सोना गिरता है. उधर डॉलर भी मजबूत है, लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है. पहले तेल, फिर सोना.
0: जी बिल्कुल. तो पहले तेल की बात करते हैं. तेल पे नजर रखनी बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है, वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है, और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है.
2: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा.
0: मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए. और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना. लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पे जरूर
2: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में हैं। ये कुछ चीजें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
0: अभी हमारे
2: मेटल्स
0: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत

0: बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी हैं और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा।
1: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने की सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगी। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड एनएचपीसी ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। एनएचपीसी ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। एनएचपीसी ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है।

0: Army Action Committee JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. The JAAC said that an individual has succumbed to his injuries after being shot in the head by forces. Meanwhile, JAAC has urged people of the POJK to participate in the protests on 23rd of July with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. Seven Indian players have progressed to the next round at World Squash Junior Championships in Niagara-on-the-Lake, Canada. India kick-started the campaign in the championship strongly, with women's top seed Anahat Singh advancing to the next round after a straight game victory against Australia's Lily Wilson today. India's Sanvi Kalanki booked her place into the next round after enduring a five-game battle against the Netherlands seed Ekle Mua. Meanwhile, Anika Dubey registered a straight game victory over Anna Kuwahara of Japan, and Rudra Singh received a walkover. And that is the end of this news bulletin.
1: Surkhiyon mein. Ye Akashvani hai. प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप के तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मोल्डोवा की यात्रा के बाद आज श्रीमती मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंची। दोनों ही देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये अब तक की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके बाद वे रोमानिया जाएंगी, जो 30 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा होगी। इन यूरोपीय देशों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों और समूचे यूरोप के साथ हमारे संबंधों के लिए इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, पूरी आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: एम्बेसडर सज्जनहार, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जो तीन राष्ट्रों की यात्रा है उसके दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया गई और उन्होंने आज मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग भी एड्रेस की, वहां के जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। सो आप हमें बताएं कि इस पूरी विजिट को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान परिदृश्य में इसका महत्व क्या है?
3: मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया हैं, ये दोनों देश आजाद हुए थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद इनको स्वतंत्रता मिली और तब से भारत हमेशा इनके प्रगति के लिए, इनके विकास के लिए इनके साथ काम करता रहा है, परंतु कोई ऐसी उच्च स्तरीय यात्रा दोनों तरफ से कहीं नहीं हुई है। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो रोमानिया तो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, 2007 से वो सदस्यता उसको मिली हुई है, और ये जो दोनों देश है, मोल्डोवा है और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये दोनों जिनको कहा जाता है कैंडिडेट कंट्री, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का जो एक बड़ा गुट है उसमें 27 देश शामिल हैं और बहुत तरीके से ये साथ में मिलकर काम करते हैं, और उसमें कैंडिडेट कंट्रीज ये हैं मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया, मतलब इनकी बातचीत शुरू हो गई है और ये कुछ सालों में ये सदस्यता भी उनको प्राप्त हो जाएगी। और ये सभी को ज्ञात है, जो इस साल के शुरू में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है, जिसको जब वहां की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भारत में आई थी तो उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन की करीब 21-22 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर अर्थव्यवस्था है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के लिए तो है ही, क्योंकि रोमानिया तो अब पहले ही ये इसका सदस्य हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, हमने एक जो इतना महत्व यूरोप को नहीं दिया जाता था पहले जितना की दिया जाना चाहिए था, और अब हम देख रहे हैं जो उसको महत्व दिया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या विकास का क्षेत्र हो या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का क्षेत्र हो, हर

0: क्षेत्र में उनके साथ हम काम कर रहे हैं और देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो, सभी के साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं।
1: और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है गॉडाना सेल्यानोस्का दावकोवा, उन्होंने अपना जो एड्रेस था, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत हेरिटेज और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का बहुत ही अच्छा संगम है और उन्होंने भारत को 21st सेंचुरी की सक्सेस स्टोरी बताया। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है और कितना आपको स्कोप दिखाई देता है आपसी सहयोग का, जैसा आप कह रहे थे ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में, जो भी इकोनॉमिक का कोऑपरेशन है उसमें कितना आपको स्कोप दिखाई देता है?
0: जी, मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे आपने कहा नॉर्थ मैसेडोनिया की जो राष्ट्रपति जिन्होंने इसके बारे में कहा, तो हमारा तो अब पिछले 10-12 साल से हमारा जो फोकस रहा है सोनू जी, वो ये रहा है जो 3 T's जिसे कहा जाता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। टूरिज्म हो गया मतलब उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी हो गए, लोग एक दूसरे के देश में जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी, उनके संबंध और अच्छे होंगे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी और इससे व्यापार को भी सहारा मिलेगा, व्यापार को भी नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलेगी। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो ये कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और पिछले अगर 5-6 साल में देखा जाए सोनू जी, पूरे विश्व में बहुत आपदाएं आई हैं, बहुत विपदा आई है। अगर आप COVID-19 पेंडेमिक से देखें तो पूरे विश्व में बहुत त्राही त्राही मच गई थी, बहुत असंतुलन हो गया था, असमानता आ गई थी, बहुत आर्थिक तरीके से बहुत देशों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। परंतु फिर भी भारत ने, चाहे वो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, चाहे वेपनाइजेशन सप्लाई चेन का रहा हो, सबके साथ जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आगे अच्छी तरीके से बढ़ती रही। उसके बाद हमने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध आया, हम एनर्जी पर कितना बाहर से ऊर्जा लाने में, तेल गैस लाने में हम कितना डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 85-90% तेल हमारा बाहर से आता है, फिर भी हमने अपनी सारी जो हमारी जरूरतें थी उसे पूरा किया और अपनी आर्थिक व्यवस्था को कहीं चरमराने नहीं दिया। और यह बात अभी भी हुई जब ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए चाहे कितना उथल पुथल रहा हो पूरे विश्व में और भारत के लिए भी ये जो हालात थे वो इतने सामान्य कुछ इतने अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी भारत बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर करता रहा। और भारत ने ये कहा है जो जब हमारा विकास होगा तो हम सभी विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चलेंगे
1: जी।
0: तो इसीलिए उनको ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, जो भारत के साथ अगर वो काम करेंगे, भारत के साथ अगर अपने संबंधों को आगे ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही विन विन सॉल्यूशन होगा जिसमें उन देशों का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है।
1: इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अभी बायलैटरल ट्रेड $133 million है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने संबोधन में कहा, और इसको दोगुना करना है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो फोकस एरियाज जो डिस्कस हुए, क्या लगता है आपको कौन से सबसे ज्यादा प्रमुख ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको लगता है कि आपसी जो कोऑपरेशन है और ट्रेड है वो बढ़ सकता है?
0: देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। एक तो मैं समझता हूँ जो फार्मास्यूटिकल्स का एक एरिया है, क्योंकि हर देश को दवाइयां चाहिए। भारत, चाहे मैंने COVID-19 का जिक्र किया तो उसमें हम पूरे विश्व की फार्मेसी तो बने हुए थे, पूरे विश्व की हम वैक्सीन कैपिटल भी बनकर उभरे उस समय। तो इसीलिए अब हमारे यहाँ से चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हमें दवाइयां बहुत मात्रा में जाती हैं, जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना ब्रांड वैल्यू लेकर इन दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कि दवाइयां वो जो आम मर्रा के जो लोग होते हैं उनके पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं। तो भारत ने बहुत ही हाई क्वालिटी रीजनेबली प्राइज्ड जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं और बहुत ही मात्रा में हम बहुत देशों में इसका निर्यात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स तो मैं एक समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। दूसरा एग्रीकल्चर, हालांकि देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया एक पहाड़ी देश है, ज्यादा वहां पर जिसे कहा जाए एरेबल या कल्टिवेटेबल लैंड नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर एक जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी।
0: और तीसरा मैं समझता हूँ हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड

0: सर्विसेज का जो हुआ, आजकल जो चल रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, इसमें भारत नए कदम उठा रहा है, नई ऊंचाइयें पा रहा है। और जो ये देश है जहां पर कि ज्यादा एग्रीकल्चर को नहीं किया जा सकता और टेक्नोलॉजी में ये देश आना चाहते हैं, तो
1: जी
0: मेरे विचार से उस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भारत योगदान कर पाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था टूरिज्म का, क्योंकि
1: जी
0: टूरिज्म एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, क्योंकि
1: जी
0: वहां, और यहाँ पर मैं इसके आसपास के देशों में सोनू जी गया हूँ, मैं मॉन्टेनेग्रो में गया हूँ, क्रोएशिया में गया हूँ, और वहां का जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से भारत के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो
1: जी
0: यहाँ भी बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है।
1: एक सस्टेनेबिलिटी पर भी काफी बल दिया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत का है या हमारा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, डिजास्टर रेजिस्टेंट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ज्वाइन करने की बात हमारी राष्ट्रपति ने कही और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? आपको लगता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में भी एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल अपनाता नजर आ रहा है?
0: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए दो चीजें मैं इसमें कहूंगा, एक तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और पूरे पर्यावरण की संरक्षण करना, ये तो एक पूरे विश्व के लिए जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर उभरा है,
1: जी जी
0: जो सभी देशों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमको ये पूरा विश्व धरोहर में मिला है
1: जी
0: ये फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए इसके बारे में तो मिलकर बात करना, सहयोग करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है।
1: जी
0: दूसरा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में उभरा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो COP21 जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, जब भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, और अब उसमें करीब 100 से ज्यादा देश जुड़ गए हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा जो नॉर्थ मैसेडोनिया या मोल्डोवा या रोमानिया, इसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जैसे कि देश आपको अफ्रीका में या एशिया में मिलते हैं, परंतु फिर भी ये वाली जो तकनीक है, ये वाली बहुत नई नई तकनीकें बनकर उभर रही हैं, और इसमें भारत ने अपने जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, 2015 के पेरिस अकॉर्ड में,
1: जी
0: हमने अपने समय आने से पहले ही हमने उनको पूरा कर लिया। हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स थे
1: बिल्कुल
0: जो हमें 2030 तक प्राप्त करने थे,
1: जी
0: उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये ISA हुआ या फिर CDRI,
1: जी जी
0: कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करने में दोनों देशों का बहुत फायदा होगा। और अगर
1: जी
0: नॉर्थ मैसेडोनिया मल्डोवा इसमें ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
1: जो उन्होंने पीस की बात करी, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनमें रिफॉर्म्स की बात की, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट पहलू लगता है?
0: जी सोनू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि हमने देखा है एक तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरे विश्व में योगदान है वो एकदम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं सुनता है, क्योंकि देशों के पास वीटो पावर है। वहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रूस के पास वीटो पावर है, यहाँ पर अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कोई भी नहीं सुनता है। और आजकल हम देख रहे हैं यूनिलैटरलिज्म का जमाना आ गया है, माइट इज राइट का जमाना आ गया है, और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में कोई ध्यान नहीं करता है। तो उसके बारे में बातचीत करना, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इससे, जैसे भारत ने हमेशा कहा है, जब तक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली UN सिक्योरिटी काउंसिल का,
1: जी
0: संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक उसका सुधार नहीं होता, उसको आज की रियलिटी में नहीं लाती, क्योंकि वो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो तभी के जो हालात थे उसी के ऊपर वो निर्धारित है, परंतु आज के हालात बहुत बदल चुके हैं, तो उसको जिसे कहते हैं मूविंग द टाइम्स, उसे करना चाहिए, वो अभी उसने नहीं किया है। और इसी के लिए अगर ये दोनों देश और उसके साथ साथ और भी देश साथ मिलकर आते हैं, तो उससे पूरे दुनिया का इसमें कल्याण होने वाला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, आप हमारे साथ जुड़े और पूर्वी यूरोपीय यात्रा जो हमारे

0: माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं उसके अहम पहलुओं पर हमें जानकारी दी।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम सांझ ढले का यह है वक्त। सांझ ढलते ही आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल लेकर आता है आपके लिए वो तमाम गीत जिनने आपकी जो शाम है वो खुशनुमा एहसास से भर जाती है।

0: 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से ये गीत आपने सुना। जॉय मुखर्जी और साधना अभिनीत ये फिल्म उस दौर की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

हेलन और दारा सिंह अभिनेत्री फिल्म थी 1967 में आई ठाकुर जनरल सिंह और ये खूबसूरत आवाज़ थी।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कह दो जहां से कह दो। अप्रैल फूल 1964 में ये फिल्म आई थी और इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। रफी साहब और सुमन कल्याणपुर का ये स्वर थे। एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आपसे रूबरू होता हूँ।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार।

0: बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

मुकेश जी और लता जी की आवाज में ये गीत दुल्हा दुल्हन फिल्म से 1964 का ये फिल्म जिसमें संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। प्रोग्राम यही संपन्न करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ और आप सुनिए प्रादेशिक समाचार इस गीत के तुरंत बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया और दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि पेपर लीक को रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश के हर परिवार से जुड़े इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों का गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्कालीन स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर संपत्ति का संपत्ति पहचान संख्या, जारी करने की तिथि, गाँव, उपमंडल, जिला, कब्जाधारी का नाम जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर QR कोड भी होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव का हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 48 गांव को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवाद के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक आधारित सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वामित्व योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इनमें ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अन्य कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 207 सीटें 5 नॉन टीचिंग अस्पतालों में आवंटित की गई हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल शामिल हैं। इस पहल से उन फॉरेन मेडिकल स्नातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा चिकित्सा पेशेवरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रादेशिक के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये देश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश की पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना डेंगू के खिलाफ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तकनीक अगली पीढ़ी के स्वदेशी उपचारों, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि संस्थान ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक धन से होने वाला अनुसंधान ऐसे उत्पादों में परिवर्तित हो जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सराय कालिखा नमो भारत स्टेशन पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की दृष्टि जांच की और उन्हें

0: स्थिति के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को भी खारिज किया।
1: कुछ लोग देश में बहुत गलत फहमी डाल रहे हैं कि यहाँ मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है सभी कम्युनिटीज की। अगर जुल्म होता हो या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या डिस्क्रिमिनेशन होती हो तो यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अपने अपने फील्ड में सभी हम मिलकर कोशिश करेंगे, अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको भी एड्रेस करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम के जोनों के नाम अब दिल्ली के राजस्व जिलों के नामों जैसे कर दिए गए हैं। संशोधित 14वीं अनुसूची में दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के नाम और उनके 12 जोनों की पूरी जानकारी दी गई है। 12 जोन के लिए हम बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में पानी की मुख्य पाइपलाइन पर कुछ बड़े सुधार कार्य के कारण सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से अगले शाम 6 बजे तक दक्षिण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली मौजूदा पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कल माटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक AC 20, 21 और 22 के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जलापूर्ति कल सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। राजधानी के दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लग गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी और इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10:20 पर सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा भारतीयों को साहसिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नामांकन आज से 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदक संबंधित राज्य सरकार के खेल विभाग या मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए

0: मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृहमंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में चर्चा होगी FIH हॉकी विश्व कप, भारत जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट मैच और कॉमनवेल्थ की तैयारियों की, और ये भी जाना जाएगा कि कैसा रहा चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पहला दिन। लेकिन पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई टीम की कमान। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कल पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला बृहस्पतिवार से शुरू होगी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए हॉकी विश्व कप की तैयारियों के साथ, जहां हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका दिया गया है। मोहित HS और सूरज करकेरा को गोलकीपर के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि डिफेंस की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच के कंधों पर होगी। मिडफील्ड की कमान मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी संभालेगी। साथ ही नीलाकांता शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और आदित्य अर्जुन लाला भी इसमें शामिल होंगे। अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा के कंधों पर होगी। भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो टीम अब तैयारियों को अंतिम रूप देने की कड़ी में पहुंच चुकी है, और अब टीम के चयन पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य चयनकर्ता और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी RP सिंह। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स कैन में। और सबसे पहला सवाल RP सिंह आपसे हमारा यही है कि भारतीय टीम में इस बार अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई युवा चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या कहा जाए कि विश्व कप जैसे बड़े अवसर पर टीम में संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की गई है?
2: देखिए, ये 6 महीने से जो हमारी टीम प्रिपेयर्ड हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रतियोगिताएं, टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, अभी आपने वर्ल्ड हॉकी लीग जितनी भी हो रही थी, तो उसी के ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप की और क्या कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा, नए भी हैं, पुराने भी हैं, पुराने क्या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज वाइज मैं बात नहीं करता, जो आज बेस्ट है उसकी बात करता हूँ। तो कुल मिला के मैं देखूं तो जो बेस्ट हमारे पास लॉट है या बेस्ट टीम है उसको सेलेक्ट किया गया है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बेस्ट टीम को मौका देने की कोशिश की गई है। और इन नए खिलाड़ियों की जो टीम में मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी करती है कि भारतीय हॉकी में जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो एक पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, वो काफ़ी मजबूत है। मैं ये जानना चाहूँगा RP सिंह जी आपसे कि इस पूरी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप करने में नई उभरती हुई प्राइवेट लीग्स की कितनी भूमिका है?
2: देखिए, जो हॉकी इंडिया लीग फिर शुरुआत हुई है, उसके पहले तो अब रेगुलर नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। बाकी जो हॉकी लीग है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले भी जो हमारी हॉकी लीग हुई थी उसी का नतीजा था।

0: कि हम लोग टोक्यो में मेडल लाए, फिर पेरिस में भी ओलंपिक में मेडल लाए।
1: बिल्कुल
0: एशिया में हमारी दोनों टीमें जा रही हैं, मेन वोमेन दोनों। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार वोमेन्स का भी हॉकी लीग हुआ था, मेन्स का भी हुआ था। उससे जो नई उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, अपने सीनियर जो वर्ल्ड लेवल के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो अपने खेल को उनको भी देखते हैं, फिर अपनी कमियों को भी दूर करते हैं।
1: जी बिल्कुल, उनके लिए एक मौका होता है। आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की कि ओलंपिक में पदक आ रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह जी, भारत ने आखिरी बार विश्व कप मेडल स्वर्ण पदक जो है 1975 में मलेशिया में जीता था, वो फाइनल मुकाबला जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था। अब 51 वर्षों का इंतजार हो चुका है, क्या इस बार आपको लग रहा है कि ये टीम मेडल लेकर आती हुई नजर आ रही है?
0: देखिए, ओलंपिक में तो हम लगातार ले रहे हैं, ये विश्व कप हम लोग 75 में जीते थे, उसके बाद से नहीं जीत पाए हैं, तो वो उसका एक मलाल है। क्योंकि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशिया कप में, एशियन चैंपियनशिप में, सब में मेडल दे रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में इधर नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारी टीम को क्वालिफाई करना, पहले अपना पूल क्वालिफाई करिए।
1: जी
0: और वर्ल्ड कप जैसे प्रतियोगिता में सभी टीमें तैयार होके आती हैं, तो अभी पहला काम यह है कि हम सब टीमों को पहले पूल को जीतें। हर मैच हमारे लिए वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होगा, और हमारी टीम को हर मैच को फाइनल समझ के खेलना पड़ेगा, तभी हम मेडल की तरफ अग्रसर होंगे।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हर स्तर पे रणनीति होगी और मजबूत तैयारी ही आखिर में उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी उम्मीद भारतीय हॉकी कई वर्षों से इस टीम से लगा रहा है। और अब बात करते हैं स्क्वाश की। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में नहस सिंह, शानवी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुरुषों में आरवीर दीवान, युषा नसीफ और गुरवीर सिंह की टिकड़ी ने पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में जगह बना ली है। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया।
2: चीन के चांगझो में आज चीन ओपन का पहले दिन खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ ने 21-10, 21-14 से हरा दिया, जबकि देविका सिहाग को थाईलैंड के बुसानन ओंग बाम रूंगफान ने 21-19, 19-21, 21-13 से हराया। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के यूसी तनाका और आयुष शेट्टी इंडोनेशिया के अली फरहान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में जापान ओपन जीतकर आ रही पीवी सिंधु भारत की उन्नति हुड्डा के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन हमसाक रूणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग का मुकाबला करेगी। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका गद्दे का मुकाबला चीन के फेन यांग जी और वांग डोंग पिंग से होगा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी चीन के ही गाओ जिंगवा तथा चेन फंग हुई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि भारत के कई अहम खिलाड़ी कल भारतीय चुनौती रखेंगे और सबसे अधिक नजरें होंगी भारत के लिए 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर, कि जिस तरह का शानदार जापान ओपन गुजरा है, क्या वो ये करिश्मा चीन ओपन में भी नशाती हुई नजर आएंगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 23 जुलानी यानी बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। ये मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा।
3: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में युवा भारतीय T20 टीम एक और परीक्षा के लिए तैयार है। इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद टीम की नजरें जिम्बाब्वे में खोया हुआ मनोबल हासिल करने पर होंगी। 3 मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और अंतिम मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। तिलक वर्मा उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम में कई नए चेहरों को मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और बाएं हाथ के स्पिन इंडियन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वहीं रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में

0: वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी जिम्बाब्वे में खुद को साबित करने के इरादे से खेलते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेटगे और रवि बिश्नोई भी भारतीय दल का हिस्सा है। इस श्रृंखला में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण टीम के कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो टीम की कप्तानी सिकंदर रजा के पास है। टीम में ब्रायन बेनेट और डायोन मायर्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल रहेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे में 2024 में खेली गई पिछली श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एशियन गेम्स से पहले भारतीय इस युवा टीम के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। एक तो उस मनोबल को हासिल करना जो शायद इंग्लैंड दौरे में इस टीम ने कहीं ना कहीं खोया है, और दूसरा एक नई लय बनाना जिसके साथ हम एशियन गेम्स में इस टीम को उतरते हुए देखेंगे। हालांकि संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो एशियन गेम्स के भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है। तो देखना होगा ये टीम जिम्बाब्वे की धरती पर किस तरह का प्रदर्शन करती है। और इसके पहले जब ये दोनों टीमें जिम्बाब्वे में आमने सामने हुई थी तो भारत ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। हालांकि जिम्बाब्वे अपने मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है, एक अच्छी टीम है जिससे अच्छी फाइट की उम्मीद होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी एक इसको एक्सपोजर ट्रिप के तौर पर, एक एक्सपोजर टूर के तौर पर लेना चाहेंगे, जहां पे वो बेहद कई सारा अनुभव लेकर के जापान के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे, जहां ये टीम एशियन गेम्स के लिए जाएगी। और एशियन गेम्स का जिक्र हुआ है तो अब चर्चा की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की भी। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है ये, जहां खिलाड़ी 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में पदकों के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। भारत की ओर से तकरीबन 125-126 खिलाड़ियों का एक दल भेजा गया है, जो 13 खेलों जिसमें पैरा कैटेगरी भी शामिल है उसमें पदकों के लिए मैदान पर उतरेगी। और इसमें स्टार जैवलिन थ्रोवर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जो एक शानदार वेटलिफ्टर हैं, और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। और खेलों के इस दल और इस पूरे आयोजन से जुड़ी अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो बात ये कि कितना बड़ा ये आयोजन होता है ये श्रोताओं को बताइए, और साथ ही कि भारत ने कितनी तैयारियां की हैं इस आयोजन को लेकर के।
2: जी शक्ति, इस आयोजन में 72 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी, जिसमें 56 जो अलग अलग राष्ट्र रहेंगे, जबकि 16 दल जो है वो आश्रित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो इस बार ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कई सारे खेलों को हटा दिया गया है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग, ट्रायथॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन्स जैसे खेल शामिल हैं। और अगर हम बात करें 2022 कॉमनवेल्थ की तो भारत ने 61 मेडल जीते थे उसमें, और जो स्पोर्ट्स हटा दिए गए हैं उनमें भारत के 30 मेडल थे, तो यानी कि 47% जो मेडल थे वो खेल अब इस आयोजन से हटा दिए गए हैं।
1: जी बिल्कुल, जब आप ये कह रहे थे कि कितने खेलों को इस आयोजन में शामिल नहीं किया गया है तो शायद हमारे सामने वो मेडल्स और उन खिलाड़ियों की तस्वीरें भी ताज़ा हो रही थी जो इन खेलों में भारत के लिए अच्छी संख्या में बड़े नंबर्स में मेडल लेकर के आते थे। और 2022 का आपने जिक्र किया, उसके पहले 2018 की बात की जाए या फिर 2010 जो भारत का सबसे सफल कैंपेन था दिल्ली में, भारत ने किसको अंजाम दिया, ये खिलाड़ी इन इवेंट्स में, इन खेलों में शानदार मेडल लाते हुए नजर आए। हालांकि अब नज़र ये होगी कि जो खेल हमारे सामने हैं उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं, तो किन खिलाड़ियों पर सबसे अधिक नज़रें रहने वाली हैं भारतीय दल से।
2: देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वहीं सर्वेश कुशारे जो है ऊंची कूद में, मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में, तो और बॉक्सिंग में अगर बात करें तो जैस्मीन लंबारा, साक्षी चौधरी ये अपना दमखम दिखाएंगी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, वहीं तुलिका मान जूडो में, और पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सोमांक राणा शॉटपुट में और शर्मिला भी शॉटपुट में अपना दमखम दिखाएंगी।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर बात की जाए गुरविंदर सिंह पे भी नजर रहेंगी, स्टार भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 6 महीनों में भारत में ट्रैक एंड स्पीड इवेंट्स की एक नई इबारत लिखी है। इस खिलाड़ी ने अपने पदक से, अपनी रफ्तार से 100 मीटर में वापस पदक के लिए उतरेंगे, और उम्मीद होगी कि भारत इस तरह के स्प्रिंटिंग इवेंट्स में भी अब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जैसे पोडियम फिनिश करते हुए अपने खिलाड़ियों को देखेगा। और नीरज चोपड़ा का तो बिल्कुल जिक्र होता है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, जहां पे भी ये खिलाड़ी उतरता है, डायमंड लीग से लेके कोई भी आयोजन, इन खिलाड़ियों के साथ साथ और क्या खास भारत के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम में हो सकता है अगर हम बहुत कम समय में समझना चाहें तो?
2: देखिए, भारत जो है वो इस टूर्नामेंट की जो है चौथी सबसे सफल टीम है, तो उसी की तरह से भारत को खेलना होगा, अपने जो कोर स्पोर्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल, अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और उम्मीद होगी कि इतने कम खेलों में भी किस तरह से वो 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ वाला प्रदर्शन दोहराया जाए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
5: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
4: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
2: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
3: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
4: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस

0: नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सके।
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी और इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके एनर्जी सिक्योरिटी में भी बायो इकोनॉमी से हमारा लाइक रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट्स एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
2: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है, जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायो प्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, जिसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो, कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी, बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैव कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैव कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिम्युलेंट्स और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, देखते जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्राउट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आप अगर यूज करके आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
1: औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं, तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायो फ्यूल की भी आपने बात करी, बायो प्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
2: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में, मैं जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल बायो फ्यूल का बात कर ले, बायो गैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स। हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है। अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी। उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा, और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन्स है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा। और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में, या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
1: जी, आपने जैसे औद्योगिकीकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया था बायोप्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायोप्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
2: तो डेफिनेटली जब हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है, फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है, जिसमें आप मटेरियल की बात करें कौन सा मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में। तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से ज्यादातर चीजों में वो चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए जो आपकी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें।
1: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर GDP यानी अर्थव्यवस्था में जो GDP का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
2: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ GDP बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन GDP का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है, और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन GDP को।
1: जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ $10 अरब का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन $195 अरब तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी, और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेजिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
2: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी है और कोशिश किया जा रहा है कि प्राली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायो पेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर,

0: और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
1: बिल्कुल। सबसे पहले ही जो बात की थी, फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
0: जी, वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है? फिलहाल अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं? इसे
1: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
0: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या क्या अक्षर बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं?
1: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं, पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको आपका ये प्रयास है, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवा स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
0: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल

0: गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा में सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
2: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जवोंस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक हड़ताल जारी। और अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच प्रदान करेगा। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडनो में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दिखाती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 जारी किया गया था। श्री राय ने कहा कि ब्यूरो को मजबूत करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिका ने बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले के कारण बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी के प्रशासनिक केंद्र खोरमोज के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इस क्षेत्र में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC नौसेना से जुड़े सैन्य ठिकाने स्थित हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कनाडा पर अमेरिकी उत्पादों के साथ भेदभाव जारी रखने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के अनुसार नए शुल्क 30 दिन में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से दोनों मित्र देशों के बीच व्यापार युद्ध गहराने की आशंका है। श्री ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा आने वाले हफ्तों में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता तेज करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में विनाशकारी बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और 80 से अधिक लोग घायल हैं। तालिबान अधिकारियों के बयान के अनुसार बाढ़ के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि नुकसान का आकलन करने, लापता लोगों की तलाश करने और राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष बचाव दल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कुवैत ने यमन के हूती समूह द्वारा सऊदी अरब से संबंधित समुद्री नौवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई समुद्री मार्गों पर नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लाल सागर की सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया। साथ ही कुवैत ने सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाए गए उसके कदमों के प्रति एकजुटता भी व्यक्त की। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जाँच की मांग की थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करने और अवैध तथा जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का प्रत्यक्ष परिणाम है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने 3 बलूच नागरिकों के कथित अपहरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये घटनाएं एक गंभीर मानवाधिकार संकट को दर्शाती है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाली हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित HS और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, गुजराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी टीम का हिस्सा है। मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह और शिलानंद लाखड़ा को भी टीम में मौका मिला है। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स साथ पूल डी में है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने व्यापार और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरुबद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में बाढ़ से 20 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक हड़ताल जारी। और अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज।
4: द JAC लीडर्स स्लैम द पाकिस्तान।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ख्वाब है आंखों में कुछ महके हुए से, आसमानों तक बना एक रास्ता है, बादलों के परों पर लिखे हैं बहारों के संदेशे, बरसात की रात है, छाई घटा है। वारिस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में आपके लिए।

कई बार घटाएं छा तो जाती हैं लेकिन बरसती नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी में मौसमों का जो इम्तहान होता है उसका दौर कभी ख़त्म नहीं होता, मुसलसल जारी ही रहता है। और ऐसे में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो वो है मोहब्बत, और केवल मोहब्बत। वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें कम से कम इम्तहानों के बाद उनका प्यार नसीब तो होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है फिल्म मैंने प्यार किया की। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए थे लेकिन एक गाने की महक सीधे दिल में उतरती है। दरअसल इसमें भोजपुरी बोली की मिठास और शारदा सिन्हा की मखमली आवाज का संगम प्यार का वो अनूठा रूहानी सफर हमें मुकाम देता है, हमें वो सफर देता है और उस सफर पर ले जाता है जहां बस दिल यही कहता है। क्या कहता है सुनते हैं इस गीत में।

पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। शारदा सिन्हा ने कमाल का भोजपुरी रंग इस गाने में घोला है। और वाकई साथियों, जिसे मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी सारी बलाएं ले लेने का मन करता है। जाने क्या शय है ये मोहब्बत, कोई रोग है, नशा है, बला है या कोई आदत। जिसे लग जाए ना, उससे फिर सारी बलाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आंखों में ख्वाब महकते हैं, धड़कनों पर सरगम मचलती है और बिना घुंघरू के धड़कनों पर एक सरगम मचलती है और फिर बिना घुंघरू के कदम खुद ब खुद थिरक उठते हैं। इस तरह सरगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

फिल्म सरगम का गीत आप सुन रहे हैं। इस फिल्म में जया प्रदा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो बोल और सुन नहीं सकती। एक गूंगी बहरी लड़की के दिल की दास्तां को जया प्रदा ने पर्दे पर जीवंत किया और बिना एक भी शब्द बोले सिने प्रेमियों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी। ये फिल्म उनकी सुपरहिट तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मोवा की हिंदी रीमेक रही और इसी के

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई

0: जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हरसिंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। अमोरे मियो डोई सेई तो टी आइस टो सरकेंडो टाई सोरो मियो, ये इटालियन भाषा की लाइन है। इसका मतलब है, मेरे प्यार तुम कहाँ हो, मेरे खजाने मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान इटली के वेनिस ग्रैंड कैनाल में एक शानदार गोंडोला पर सवार हैं। गोंडोला वेनिस की लंबी सकरी सुंदर लकड़ी की एक शानदार नाव होती है जो वहाँ के कैनाल में चलाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे चलाने वाले नाविक को गोंडोलियर कहा जाता है। गोंडोला वेनिस शहर की पहचान मानी जाती है। ये गीत वहीं पर फिल्माया गया है। गीत में जो गोंडोलियर है वो ये लाइन गा रहा है और गीत के बीच में वो एक और जगह गाता है, अमोरे मियो इल टेम्पो वोला प्रेंडिलो प्रेंडिलो अमोरे मियो। इसका मतलब है, मेरे प्रिय समय उड़ जाता है, इसे पकड़ लो मेरे प्रिय। कितनी प्यारी सीख छिपी है ना इस गीत में। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और इटालियन भाषा में शरद कुमार ने। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। सुनते हैं गीत।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी

0: वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Union Health Minister J.P. Nadda today visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi and reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister also held a meeting with the doctors at the hospital. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who are admitted there. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP today criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that today's incident is unfortunate and termed it a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu today said India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors. President Murmu was addressing the media in Skopje after holding talks with her North Macedonian counterpart Gordana Sianoska Davkova. Later, addressing the Assembly of North Macedonia, President Murmu conveyed the goodwill of 1.4 billion Indians. She described North Macedonia as an important partner in building a stable, multipolar and prosperous global future. After concluding her visit to North Macedonia, she will travel to Romania. Hockey India has announced the 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी.

0: एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद, प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी।

0: Something extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up. And that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp. And the overall sentiment in terms of, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable, sentiment which is there in the market, but the market is yet to try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter, that's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
1: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग बराबर से ही रहे। और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोजी। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। क्या बाजार कुछ अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
0: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिस पे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ही हम मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नज़र उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
0: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड़ आ सकता है उस पर एक नजर है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या

0: सीधे सीधे ना सही, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीज़ें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने जगह पर स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में, एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का ज़रूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं, एमएसएमई सेक्टर है जहाँ से बड़ी मात्रा में हमको रोज़गार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
1: जी बिल्कुल, और ये एक, इसे मैं टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कहूँगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नज़र जरूर है, और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएँ, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज़्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द से मेरा मतलब 3 से 6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
0: एक चीज और संक्षेप में यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पे स्थिर हैं, और अब वो कहाँ, मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
1: देखिए, क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी, जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा, और मॉनसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा, और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा।
0: चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र, जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पर देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नजर आई, एशियाई बाजारों में लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्था ही मान चुकी है कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
1: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको 2, 4, 5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं,

0: और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना और ख़ासतौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है, इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है। तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते जरूर ढूंढे हैं और एक तरीका जरूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
1: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
0: Well, you know, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, you know, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, you know, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any, you know, unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There is always a meeting ground, and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some, you know, negative impact on the markets, specifically, you know, in US, in Canada, and in European markets as well. But it doesn't. It's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets and specifically us out here in India.
2: नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। इस कॉपीएम में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं, साथ ही आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि भारत और उत्तरी मकदूनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच भी प्रदान करेगा।
1: बैंक्स हैव मोबिलाइज्ड ओवर 20.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्पेशल स्वैप स्कीम टिल फ्राइडे लास्ट वीक। The scheme was operationalized on 8th of June. According to RBI's data issued yesterday, of the total deposits, banks received 17.4 billion US dollars through foreign currency non-resident FCNR bank deposits. Nearly 2 billion USD were raised through overseas foreign currency borrowings or OFCBs, and over 1.3 USD through external commercial borrowings. RBI had announced this conceptual swap facility with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. The swap facility for FCNRB deposits will remain available until 30th of September 2026. Vishal, can this rise in FCNR deposits be seen as a sign of growing global confidence in India's economic stability?
0: Well, yes, that is one way of looking at it. The other way of looking at it is that the RBI has given the opportunity or the option to non-resident Indians, NRIs or, you know,

0: आपको नजर आती है?
1: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी हैं और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा।
2: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
3: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। सी यू टुमारो, अंटिल देन गुड बाय।
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन में आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत लिया है हमने फिल्म साजन से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।

फिल्म भीगी पलकें का ये गीत आप सुन रही हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इससे पहले आपने गीत सुना फिल्म श्री 420 का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका।

0: लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में WTO के सदस्य देशों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सीमा शुल्क प्रणाली में सुधार और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case. Prime Minister Narendra Modi has

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर बात मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही होता है जब जहाँ किसी की एक झलक दिल की धड़कनों को बदल कर रखते और फिर हर बार उसी की आहट, उसी का ख्याल हमारे इर्द गिर्द ठहर जाए और दिल बस एक ही ख्वाहिश करे कि काश वो सामने हो और ये वक्त यहीं थम जाए। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है या रब वो उधर पैदा कर। काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो थका हुआ मेरी बाहों में ज़रा सो गया था। तो क्या हुआ? वो थका हुआ मेरी बाहों में ज़रा सो गया था तो क्या हुआ? मैंने चांद देखा है किसी शाखे गुल पे झुका हुआ।

जी हाँ, सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। बदलते मौसम, बदलते दौर और बदलती राहों के बीच भी दिलों का रिश्ता अपनी खूबसूरती बनाए रखता है। मोहब्बत की यही तो सादगी है और यही गहराई जो हर दौर में नई लगती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसकी मौजूदगी ही हर खुशी की वजह बन जाए, और जिंदगी का हर रास्ता उसी से होकर गुजरता हुआ महसूस हो, जी हाँ यही तो है प्यार। ये प्यार का वही खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों को अनमोल बना देता है। बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अब कोई आरजू नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो।

कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही दिल की हर बात कह जाती हैं, और एक मुस्कान अनकहे जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर देती है। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं निशिगंधा। जिंदगी हर किसी को हर दिन कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा नहीं देती, लेकिन कभी कभी कुछ किस्मत वालों को कुछ ऐसे लम्हे मिल जाते हैं जो बरसों के इंतजार के बाद मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो उसकी मुलाकात, एक मुलाकात भी पूरी जिंदगी को संवार देती है, खूबसूरत बना देती है।

खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। हंसो आज इतना किस शोर में, हंसो आज इतना किस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।

देखिए चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ ही आ चुके हैं और चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाएंगे आपको, एक और खूबसूरत सा गीत। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, गजल के रेशमी धागों में यूं मोती पिरोते हैं, कहीं पानी कहीं शबनम कहीं

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है।

संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। गीत सुहाने लेकर मैं सुरभि आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और खूबसूरत लम्हों का भी साथी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर दिल को एक नई ताजगी दे जाते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे ही सुरीले और सदाबहार गीत के साथ।

आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते। सर रखते हैं सर में नहीं सौदाए मोहब्बत, दिल रखते हैं दिल में कोई अरमा नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा। शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, खाक में मिलकर तो हासिल मुअद्दा हो जाएगा। तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा।

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए गीत सुहाने में अब आपको सुनवाते हैं नीला आकाश फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। ये बात की सूरत के भले दिल के बुरे हों, अल्लाह करे झूठ हो बहुतों से सुनी है। गजलों ने वहीं जुल्फ के फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा है बहुत धूप कड़ी है। आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। आशिकी में बहुत जरूरी है बेवफाई कभी कभी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि वो गजल बालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं समझता था मोहब्बत की ज़बां खुशबू है, फूल से लोग इसे खूब समझते होंगे। भूल कर अपना ज़माना ये ज़माने वाले, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

प्यार भरी नजर का जादू कुछ ऐसा होता है कि दिल अपनी धड़कनों का हिसाब ही भूल जाता है। एक मुस्कान मासूम सी, एक चुपके से उठी नजर और अनकहे एहसास, यही तो मोहब्बत की है सबसे हसीन जबान। और इसी दिलकश अदा और प्यार की मीठी कशिश से सजा है अगला गीत।

धीरे धीरे वक्त हमें अंजाम की तरफ ले आया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जी हाँ, जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो हर गली रोशन लगने लगती है और हर शाम चांदनी से भर जाती है। किसी अपने की एक झलक, उसकी एक मुस्कान और एक मुलाकात का इंतज़ार, यही प्यार की सबसे खूबसूरत धड़कन है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबू की तरह आया वो तेज़ हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज़ हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में। तुम छत पे नहीं आए, वो घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत लटका सावन की घटाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों की बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में।

इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब सुरभि को दीजिए इजाज़त, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीके

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 18 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्यार का रास्ता कभी सीधा साधा तो रहा ही नहीं, इसमें थोड़ी शरारत होती है, थोड़ा अलबेलापन और थोड़ा सा सुरूर। जब दो दिल इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो राह का हर मोड़ हसीन लगने लगता है। मोहब्बत का ये सफर जितना अनूठा है उतना ही अलबेला भी है। आइए लिए चलते हैं आपको बीते हुए सुनहरे दौर में।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी नहीं झुकता, ना तो वह झुकता है और ना ही किसी को झुकाता है, बल्कि वह सर उठाकर हर तूफान का सामना करता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार की डोरी जब दो दिलों के बीच में बंध जाती है, फिर न जमाने की कोई बंदिश न किसी का डर, फिर तो ये खूबसूरत प्रेम खामोशी में भी कितना कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से।

अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। तेरी यादों के चिरागों से पलकों की शामें जलती हैं। सोचती हूँ सो जाऊं किसी ख्वाब में जाकर, पर ख्वाबों में भी तेरी ही आहटें चलती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और गीता रॉय की आवाज में फिल्म गूंज उठी शहनाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में फिल्म चोरी चोरी से अभी आपने गीत सुना। तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, यादों के सहारे ही सही हमेशा दिल में रहोगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पारस मणि से ये गीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। ना बंधन है ना फेरे हैं, ना बंधन है ना फेरे हैं, एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं। दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप हमारे लिए बने हैं और हम आपके लिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म इंतकाम से ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कोहिनूर से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब हमराही कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बनने वाले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैनिक कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन यदि उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा शुरू की या हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश का नेतृत्व सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और ईरान अपने फैसले मजबूती

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को इस प्यारे से मौसम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक आशा होती है कि उसका परिणाम अच्छा हो, पर मन में अलग अलग विचार भी आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पर फिर भी हमारे मन में एक उम्मीद की किरण तो जल ही जाती है। और दोस्तों, ज्यादा सोचना भी कभी कभी हमारी परेशानी का सबब बन जाता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा यही सोचकर आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आशा से ये गीत।

दोस्तों, मौसम बहुत सुहाना है और बाहर हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। जिंदगी के कुछ पल इस प्यारे से मौसम के साथ बिताइए और साथ में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे, यानी फूल और कांटे दोनों ही होंगे, और अगर आपने दोनों के संग रहना सीख लिया तो जिंदगी अपने आप ही महक उठेगी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अनोखी रात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मंजिल से।

उलझनों से भरी इस जिंदगी को, उलझनों से भरी इस जिंदगी को जरा बेफिक्री से जीना सीखो। आसमां तो वही है साहिब, बस तुम थोड़ा खुलकर उड़ना सीखो। आइए सुनते हैं नर्थ की फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म नया दौर से अभी आपने गीत सुना। छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, जब भी मिले फुर्सत के पल प्यार का जहां बसाने चले। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ही जिया जाए कि कुछ फर्क ही ना पड़े। ये अभी आपने गीत सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और दोस्तों, इस दुनिया में हम आए हैं तो सभी तरह से दुनियादारी भी निभानी ही पड़ेगी, चाहे है तो थोड़ा बहुत मुश्किल ही, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दुनियादारी से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपजे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन के माध्यम से साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपजे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा अगर शुरू करी या फिर होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने और शांतिमय माहौल में प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने।

दोस्तों, हंसी जिसका सुख केवल इंसान को ही मिला है, और जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर की सारी नसें, जो भी ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज से ही हंसी को अपने दिनचर्या में शामिल करें।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़े हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बस दिल में जोश और जुनून कायम रखिए, फिर देखिए कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।

एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में, फिल्म आजाद से।

दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर एक नई चुनौती है। कभी अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है तो कभी कुछ बुरा। पर कुछ भी हो दोस्तों, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल इस गीत की तरह जो लिया है फिल्म मेरी जंग से नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।